0: हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजी याजू, आकाशवाणी ईटानगर की स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 अगस्त महीने का गुरुवार दिन और तारीख है 20। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीडे में मौजूद है हमारे पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग और तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक आपको मिलेगा पॉजिटिव स्टार्ट। 6:40 सुनिए कालोतारिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बतानी दैनिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज़।

7:40 पेश है सदाबहार सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में, राष्ट्र समाचार 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा हमारा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट।

तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहाँ हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी जानकर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डी

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

ही आकाशवाणी ईटानगर हिलो हो पोल ग आलो हम नान मदो आर होक गालो मेंके नाग में मिलने जिदाक नंगो दक्षपत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में मलो राष्ट्रपति भवन लो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ओक इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस लो ऑफिसर में पाला ट्रेनिंग इंगो ही लायन गदम कारिता रखी दुला मेनला वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिया इकोनॉमिक्स ओक पब्लिक पॉलिसी ही गे लगभग लगभग इधे निम लगभग इधा कुन्ना के अमला मेंटु प्रेसिडेंट मु ऑफिसर गदम मेंटला नुनु डिसीजन लातियम मु दिहाग दिला लातला का ऑफिस लो निय कार्यकर रखित ब आन गो कायम एगम आया काल ब कातला का ओक आयग ईमानदारी एम नेम जदम आपका अमला सिन दोई मोतातु यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू मुमेनला इजाग नतीजाब चाइना गद अरुणाचल ग कोदेलो आदो अमला मेनम हिगे मनम आगम गोक अमला मेंतु IANS लो इंटरव्यू जिदुला रिजिजू मुमेनला इंडिया ग गदा इस लो चाइना गद 60 किलोमीटर गोब आंग एक दुकु अमला मेनम हिगे मर्म एक दुनाक अमला सिन मेंबक जितु रिजिजू मुमेनला चाइना का देदा मोक मोकलो मुनगे एक्टिविटीज एम इला दोरु दो एम ला तो लिखितु ओक दोलु निगत गे आगोमाई जब जिना मम मुनो आजामायाम बे मुला ये दुबे इब मोक एम ला सिन मेंटातु केनलो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडु मु वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन ने न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन लो कार्यता रखितु सीएम कांदो में राधा कृष्णन ने कार्यता रखे दुला अरुणाचल प्रदेश एम कागोता गोता बहारुतो का अमला तोमतु एगम ने वाइस प्रेसिडेंट में तो लिखितु निर्मय कांदो में मुगे स्टेट के अन्य न्यू ये आरा लोक प्रोग्रेस रिपोर्ट एम वाइस प्रेसिडेंट ने जिलुक जितातु आरडी एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंगता सिंह में मलो अरुणाचल प्रदेश स्टेट एपेक्स बैंक लिमिटेड ग आली जाब मोलुकला लेनम कॉन्फ्रेंस हॉल एम नहरलगन लो मोकोक जीतु ओक डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन ग लोगो एम सिन मोकोक जीदा जीरा जीतु कोकुबे को निर्म ओजिंगता सिंह म सेक्रेटरी कॉपरेशन मीतो दिर्ची कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग रजिस्ट्रर ओक डिस्ट्रिक्ट नारू लोक DRCS ओक ARCS रोगदम दुग दुला डिपार्टमेंट ग लग लगा एम अलजाब जिक्का को कहितु मेंके नागोम हिम नुनो आकाशवाणी ईटानगर लोक के तपादु तावांग डिस्ट्रिक्ट ग इलेक्टोरल ऑब्जर्वर वाईडी रिंगु म तावांग डिस्ट्रिक्ट ग इलेक्टोरल ऑब्जर्वर YW रिंगु म मलो तावांग डिस्ट्रिक्ट लो इजाग SIR इंगो हिला लेनम एम अलिब हिदी पर्दी हिनाम लगा ब दिन सुरुना कति कबागो बादुम गतु मलो आपर सेवन सरे ग फिनेंशियल ईयर 2026-27 लोक जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एम फाइनलाइज गेला अप्रूव दो ब मदुला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मीटिंग एम DC कॉन्फ्रेंस हॉल दा परिजलो लोदुम गतु सीएम एक्सेस एथलीट्स तीनोंग वांगपांग ने एशियन पारा गेम्स 2026 ग मेंस 400 मीटर T37 कैटेगरी लो इंडिया एम रिप्रेजेंट दोब अमला दर्लें जितु सेलेक्शन न्यूज एम तान्यूम तोला DCM चानमें मु सोशल मीडिया लो पोस्ट दुला मेनला वांगपांग मु नानामी नम काम अब असिना पुक मु दिहाग दिला दोला मु ग अगर आना मिला ये नम लगा अब अत्रुना अचीवमेंट एम पादा कुन्ना के अमला मेंतु मलो यामेगत के क्रिकेट लो इंडिया ए श्रीलंका एम 165 रन्स लो के गल्ले लो इगुम गेक बा अमला मेंतु इजा इंडिया ए सीरीज लो 1-0 लो के लीड ला दो दुना के अमला सिन में पाजी तातु पापुम पारे एम कताला गुग स्टेट हो के इयेगो ला अक्के डिस्ट्रिक्ट लो दोई दो गुम गुम ला दो यक यग ला ओक निदो अतिब ओदे दो अंदुला मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर गद्दे येलो अलर्ट गो जिलेन जितु केतन गद्दे

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में हमारा रीजनल समाचार अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत वादियों, सुबह की ताजगी, ठंडी हवा और सूरज की पहली किरण के साथ आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी आपके आरजे याजू का बहुत बहुत प्यारा गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। घड़ी ने सुबह के ताजा वक्त का इशारा कर दिया है और अब वक्त हो चला है आपके मनपसंद प्रोग्राम का सुबह सवेरे। दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो आलस की चादर तान कर सोते रहे या फिर बिस्तर छोड़कर अपनी बॉडी और माइंड को एक नई एनर्जी दे। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी रहना बहुत मुश्किल है, घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ेगा, पर सच तो ये है कि अगर आप रोज सुबह 20 से 25 मिनट अपने शरीर को दें तो पूरा दिन आपका फोकस, एनर्जी और मूड नेक्स्ट लेवल पर रहता है। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और रूहानी गीत के साथ। उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे योगा आसनास की जो आपकी डेस्क लाइफ और स्टिफ बॉडी को पल भर में रिलैक्स कर देंगे। तो सुनिए ये पहला गाना। Coke Studio, Season 15.

वेलकम बैक टू सुबह सवेरे ऑन अरुण एफएम। दोस्तों, आमतौर पर जब योगा की बात आती है हम सब वही कॉमन पोजेस के बारे में सोचते हैं, पर आज हम बात करेंगे तीन ऐसे इफेक्टिव आसनास की जो मॉडर्न पोस्चर और टाइट मसल्स को डीपली टारगेट करते हैं। पहला है मालासना, जिसे हम गार्डन पोज भी कहते हैं। सुबह फ्लोर पर डीप स्क्वाट पोजिशन में बैठिए। ये पेल्विक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लोअर बैक स्टिफनेस हटाता है और डाइजेशन को नेचुरली एक्टिवेट करता है। दूसरा है गोमुखासना, जिसे हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। एक हाथ ऊपर से और दूसरा पीठ के पीछे से ले जाकर फिंगर्स लॉक कीजिए। जो लोग दिन भर स्क्रीन या मोबाइल पर काम करते हैं, ये उनके टाइट चेस्ट और राउंडेड शोल्डर्स को इंस्टेंटली ओपन करता है। और तीसरा है विपरीता करानी, जिसे हम लेग्स अप द वॉल भी कहते हैं। बस दीवार के सहारे दोनों टांगे 90 डिग्री एंगल पर ऊपर करके 5 मिनट लेट जाइए। ये लेग्स की स्वेलिंग और फैटीग को दूर करता है और नर्वस सिस्टम को डीप रिलैक्सेशन देता है। दोस्तों, बॉडी तो बढ़िया स्ट्रेच देने के बाद आइए सुनते हैं ये अगला खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों, योगा और एक्सरसाइज के बाद अब वक्त है कुछ ऐसी फंक्शनल मूवमेंट्स का जिनके लिए किसी फैंसी जिम या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि वॉल एंगल्स। दीवार के साथ पीठ, हिप्स और सिर चिपका कर खड़े हो जाइए और दोनों आर्म्स को दीवार पर स्लाइड करते हुए ऊपर नीचे कीजिए। ये आपके राउंडेड शोल्डर्स और नेक अलाइनमेंट को ठीक करता है। दूसरा है फार्मर्स वॉक, इसे हम लोडेड कैरी भी कहते हैं। घर में दो भारी बकेट्स या बैग्स दोनों हाथों में उठाइए और स्ट्रेट पोस्चर के साथ 3 मिनट वॉक कीजिए। ये कोर स्टेबिलिटी, ग्रिप स्ट्रेंथ और ओवरऑल बैलेंस को सॉलिड बनाता है। तीसरा है स्टैंडिंग ग्लूट किकबैक्स, चेयर का सहारा लेकर एक पैर को पीछे स्क्वीज करते हुए उठाइए। दिन भर लगातार बैठने की वजह से जो मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, ये उन्हें इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों, चलिए बॉडी मूवमेंट्स के बाद एंजॉय करते हैं ये हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक टू सुबह सवेरे दोस्तों। योगा और एक्सरसाइज के बाद अब बात करते हैं तीन जरूरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टिप्स की। पहला है सर्कैडियन हाइड्रेशन। सुबह खाली पेट डायरेक्ट चाय या कॉफी लेने से बचे। पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पिए जिसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर या अदरक का रस मिक्स हो। ये गट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है। मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर, सुबह की नेचुरल धूप में 10 से 15 मिनट जरूर बिताएं। ये बॉडी के सर्कैडियन रिदम को सेट करता है जिससे दिन भर एनर्जी रहती है और रात को गहरी नींद आती है। तीसरा है लोकल फर्मेंटेड फूड्स। अपनी डेली डाइट में लोकल फाइब्रोस ग्रीन्स और नेचुरली फर्मेंटेड आइटम्स शामिल करें जो गट माइक्रोबायोम के लिए बेस्ट प्रोबायोटिक का काम करते हैं।

तो दोस्तों ये था आज का ताजगी भरा सुबह सवेरे पर। उम्मीद है आप इन टिप्स को अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएंगे। खूब पानी पिए, हेल्दी खाइए और खुलकर मुस्कुराइए। मैं लेती हूं आपसे विदा, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी टानगर। हम फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, तो कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे ताकिन भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होते हैं दिल से दिल की बात।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपाता है दालेख में समाचार। और अब वक्त हो चला है एक नई ऊर्जा, नई जोश और ढेर सारी जानकारियों से भरे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। आप सभी प्यारे श्रोताओं को एक बेहद ही शानदार और ताजा तरीन सुबह मुबारक। मैं हूँ आपकी आरजे याजू। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत को और दिलचस्प बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पता है दोस्तों, हर सुबह हमारे लिए कुछ नया सीखने और दुनिया को एक नए नजरिया से देखने का मौका लेकर आती है। और हमारे ये शो यानी मॉर्निंग एंटरटेनमेंट आपके लिए एक ऐसा ही गुलदस्ता है जहां आपको मिलेगी संगीत की धुन, आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व और हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश समेत देश दुनिया की ताजा खबरें। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं एक बेहद ही स्वीट और दिलदार गाने के साथ। आप गुनगुनाइए ये पहला गाना और मैं लेकर आती हूँ दुनिया का इतिहास सिर्फ आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक टू मॉर्निंग एंटरटेनमेंट दोस्तों, आइए देखते हैं कि 20 अगस्त का दिन ग्लोबल हिस्ट्री में किन बड़ी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन 1977 में नासा ने अपनी हिस्टोरिक अनमैन्ड स्पेस प्रोब वोयाजर 2 लॉन्च किया था। इस मिशन ने सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के एक्सप्लोरेशन में एक नया अध्याय शुरू किया था। 20 अगस्त 1897 को सर डोनाल्ड रोस ने मलेरिया पैरासाइट और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के कनेक्शन को डिस्कवर किया था, जिसके सम्मान में आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है। 1940 में रशियन रिवॉल्यूशनरी और पॉलिटिकल थिंकर लियोन ट्रॉट्स्की पर मेक्सिको सिटी में हमला हुआ था, जो 20th सेंचुरी के ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सोवियत यूनियन के विघटन के दौरान 20 अगस्त 1991 को एस्टोनिया ने फॉर्मल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके अपने मॉडर्न लोकतंत्र की नींव रखी थी। तो दोस्तों, ग्लोबल हिस्ट्री की इन दिलचस्प फैक्ट्स के बाद आइए सुनते हैं ये अगला खूबसूरत नगमा।

दोस्तों पलटते हैं हमारे अपने देश भारत के इतिहास के पन्ने और देखते हैं आज के दिन की बड़ी घटनाएं। आज ही के दिन 1944 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। देशभर में आज का दिन सद्भावना दिवस और रिन्यूअल एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म्स और मॉडर्न थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मो समाज की स्थापना की और आज ही के दिन कलकत्ता में इसका पहला हिस्टोरिक सेशन आयोजित हुआ था। 1921 में केरला के मलाबार क्षेत्र में मोपला विरोध की शुरुआत हुई थी, जो कॉलोनियल रूल के दौरान इंडियन हिस्ट्री का एक

बहुत बड़ा और चर्चित अध्याय बना। 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में विनेश फोगाट ने 50 केजी वुमेन्स रेसलिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और वो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। इतिहास की गौरव में उस सफर के बाद अब वक्त हो गया है एक और शानदार गाने का।

दोस्तों आइए नजर डालते हैं आज की द अरुणाचल टाइम्स की प्रमुख खबरों पर थोड़ी तफसील के साथ। एचटी हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन मिनिस्टर्स एपेलेट पावर इन म्यूनिसिपल डिफेक्शन केसेस। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में म्यूनिसिपल बॉडीज के डिफेक्शन मामलों पर कैबिनेट मिनिस्टर के एपेलेट पावर्स को इनवैलिड करार दे दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी क्वासी जुडिशियल पावर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन के बजाय इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटीज के पास होनी चाहिए ताकि फेयर ट्रायल एंश्योर हो सके। अरुणाचल ब्लॉकेड बाय असम शूट्स पर फ्रेश पुश फॉर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। असम साइड के लगाए गए इकोनॉमिक ब्लॉकेड के चलते डेली एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इस सिचुएशन ने स्टेट के इंटरनल फुटहिल रोड नेटवर्क यानी ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे को बिना डिले फास्ट ट्रैक करने की डिमांड को फिर से तेज कर दिया है ताकि इंटर स्टेट डिपेंडेंसी कम हो सके। असम ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस प्रोटेस्ट ओवर 10 अगस्त फायरिंग इंसिडेंट। 10 अगस्त को बाउंड्री स्ट्रेच पर हुई फायरिंग घटना को लेकर असम बेस्ड स्टूडेंट और सिविल ऑर्गेनाइजेशन का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस तनाव के मद्देनजर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्डर पॉइंट्स पर हाई अलर्ट मेंटेन कर रहे हैं और डायलॉग के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।

तो श्रोताओं, ये था आज का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट शो। उम्मीद है आपको इतिहास के फैक्ट्स और आज की ताजा खबरें पसंद आई होंगी। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे तागिन दैलेक में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दागिन भाषा में हमारे समाचार या आकाशवाणी चैनल का 103.1 MHz से। दोस्तों अपर सुवनश्री की खूबसूरत वादियों दापोरिजो के किनारों से लेकर ईटानगर के इस हसीन सुबह तक आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी आपके आरजे याजू का बहुत बहुत प्यारा और ताजगी भरा गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। घड़ी ने इशारा कर दिया है कि एक ऐसा सफर का जहां वक्त तहर सा जाता है और पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जी हां, वक्त हो चला है आपके दिल के सबसे करीब कार्यक्रम का सदाबहार। पुराने गानों की बात ही कुछ अलग होती है ना, उनकी धुन में एक ऐसी महक होती है जो दिल के हर कोने को छू जाती है। आज के इस शो में हम सुनेंगे एवरग्रीन गोल्डन एरा के अनमोल नगमे और साथ ही जानेंगे आज के मौसम की पूरी विस्तार में। तो बैठ जाइए आराम से, बनाइए एक प्याली गर्म चाय और लीजिए इस सुहाने सफर का मजा इस पहले एवरग्रीन गोल्डन क्लासिक के साथ।

वेलकम बैक टू सदाबहार दोस्तों। गानों के इस मधुर सिलसिले के बीच आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आईएमडी द्वारा जारी पूरे अरुणाचल प्रदेश के स्टेट वाइड वेदर बुलेटिन पर। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव मॉनसून कंडीशंस हैं। वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जैसे तवांग, वेस्ट कमिंग, ईस्ट कमिंग, पपुमपारे, पाके केसांग और लोअर सुबनसिरी में आसमान बादलों से घिरा रहेगा। आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स के दौरान मॉडरेट टू हैवी रेन शावर्स का असर है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और फुटहिल जैसे चांगलांग, तिराप, लोंगडिंग, लोहित, अंजाव और नमसाई बेल्ट में इंटरमीडिएट रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी 85 से 95% बनी रहेगी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों बात करते हैं आईएमडी ईटानगर लोकल फोरकास्ट के मुताबिक ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लोकल वेदर अपडेट की। ईटानगर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह से पार्टली टू जनरली क्लाउडी स्काइज रहेंगे और दोपहर या शाम के वक्त लाइट टू मॉडरेट रेन का थंडर शावर होने की पूरी संभावना है। ह्यूमिडिटी लेवल सुबह लगभग 88% और शाम तक 78% के आसपास दर्ज किया गया है, जिससे थोड़ी उमस महसूस होगी। बारिश के चलते सिटी बाईपास और स्लिपरी रोड स्ट्रेचेस पर

सावधानी से कम्यूट करें और अपने रेन प्रोटेक्शन गियर जरूर साथ रखें। तो चलिए मौसम की ताजा जानकारी के बाद चलते हैं रेट्रो संगीत की एक और सुहानी कली में।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का सुहाना सफर सदाबहार पर, जहां हमने सुने पुराने जमाने के लाजवाब नगमे और ली आईएमडी द्वारा प्रमाणित मौसम की थपती ठंडी खबरें। मौसम चाहे जैसा भी हो, अपने मन का मौसम हमेशा खुशगवार बनाए रखे, अपना और अपनों का ख्याल रखे और बारिश में तेज ड्राइविंग से बचे। मैं लेती हूं आपसे विदा, पर आप सुनते रहिए आपका अपना स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000.
3: Puri colony ne solar panel lagwa.

0: लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
4: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
5: विद क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
6: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविध और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
7: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय

0: महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नव भारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

नमस्कार ईटानगर समाचार के इस दौर के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, कुछ नई जानकारी हासिल करने का और एक ऐसे विषय पर बात करने का जो सिर्फ आज के दिन से नहीं बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और अब शुरू हो रहा है आपका अपना जानकारी और शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक ही जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग परंपराओं को माना जाता हो, अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हो, फिर भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो, तो क्या ये किसी देश की ताकत नहीं है? बिल्कुल है। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही शायद यही है, हमारी विविधता। आज 20 अगस्त हम एक ऐसे ही विचार को याद कर रहे हैं, सद्भावना दिवस। लेकिन सद्भावना दिवस का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है? इसका संबंध हमारे देश के इतिहास से क्या है? और आज के समय में जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, तब सद्भावना हमारे लिए और भी जरूरी क्यों हो गई है? आज के हेलो ईटानगर में इसी बात को समझेंगे, थोड़ा इतिहास के साथ थोड़ा वर्तमान से जोड़कर और कुछ ऐसी बातों के साथ जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती होती है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। सद्भावना दिवस उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, परस्पर सम्मान और अहिंसा की भावनाओं को बढ़ावा देना। अब यहां एक शब्द है सद्भावना। इसका सीधा सा अर्थ है दूसरों के प्रति अच्छी और सम्मानपूर्ण भावना रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे सोचें, बल्कि इसका मतलब है कि अलग सोच रखते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं और यही बात भारत जैसे देश में बहुत मायने रखती है। दोस्तों एकता और अपनापन की बात हो और संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी खूबसूरत भावना के साथ सुनिए एक गीत।

दोस्तों, इस गीत की तरह हमारे देश भी अलग अलग सुरों से मिलकर बना है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को ही देखिए, यहाँ की अलग अलग जनजातियां, भाषाएं, लोक परंपराएं, परिधन और त्योहार, हर एक की अपनी अलग पहचान है। लेकिन क्या अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए दूसरे की पहचान को कम समझना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। असली सद्भावना तब है जब हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें और दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान करें। इसी को हम कह सकते हैं विविधता में एकता। आज की दुनिया में सद्भावना की जरूरत शायद और बढ़ गई है, क्योंकि आज एक बात सिर्फ हमारे आसपास के कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर

दोस्तों वापस आ गए हैं हम एलोही टानागर में और अब एक सवाल आपसे, आपके लिए सद्भावना का क्या मतलब है? शायद किसी के लिए इसका मतलब है पड़ोसी की मदद करना, किसी के लिए दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना, या किसी के लिए अपने दोस्त के विचारों से अलग होने के बावजूद उससे दोस्त बनाए रखना, और किसी के लिए बस इतना कि हम किसी के प्रति नफरत नहीं समझने की कोशिश रखें। यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़े समाज का निर्माण करता है। और अगर हम इस बात को बचपन से ही अपने बच्चों को समझाएं तो इसका प्रभाव और भी गहरा होगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक पाना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना भी शिक्षा का ही हिस्सा है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के हेलो ईटानगर के अंतिम पड़ाव पर। दोस्तों आज हमने बात की सद्भावना दिवस की। 20 अगस्त को मनाया जाने वाला वो दिन जो हमें राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, परस्पर सम्मान और अहिंसा की याद दिलाता है। लेकिन इस दिन को सिर्फ एक तारीख बनकर ना रहने दें, इसे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा विचार बनाएं। अपनी भाषा से ये प्यार करें, दूसरी भाषा का सम्मान करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, दूसरों की संस्कृति को समझने की कोशिश करें, मतभेद हो तो बात करें, नफरत नहीं, और किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि भारत की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम सब एक जैसे हैं, बल्कि इस बात में है कि अलग होते हुए भी हम एक साथ हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के हेलो ईटानगर से मुझे आपकी अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुणिफ में 103.1 मेगाहर्ट्ज। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनाए रखें। और दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृषि जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नदिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन। राष्ट्रीय खबरों के गंभीर माहौल के बाद अब वक्त है अपने मूड को 180 डिग्री घुमाने का और फिल्मों की चमचमाती मसलेदार और ग्लैमरस दुनिया में एंटर करने का। अरुणाचल प्रदेश के सभी फिल्म बफ्स, पॉपकॉर्न लवर्स और सिनेमा के दीवानों को आपके दोस्त आरजे याजू का बहुत बहुत प्यारा गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। घड़ी ने इशारा कर दिया है एंटरटेनमेंट का सबसे बड़े अड्डा का जो है फिल्मी गपशप। बॉलीवुड के कॉरिडोर से लेकर ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लेटेस्ट बिंजेस तक टिंसल टाउन में ऐसी कोई खबर नहीं जो आज हमसे छूटने वाली है। बॉक्स ऑफिस क्लैशेस, फ्रेश ओटीटी प्रीमियर्स, न्यू लुक रिवील्स और बिहाइंड द सीन्स कॉन्ट्रोवर्सीज आज के इस मेगा शो में हम सब कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो रेडी हो जाइए पूरे एंटरटेनमेंट राइड के लिए और चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं इस चार्टबस्टर पार्टी सॉन्ग के साथ।

वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप ऑन अरुण एफएम। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े फेस ऑफ के जो इस वक्त थिएटर्स में गर्मा गर्मी मचाए हुए हैं। इमरान हाशमी की आइकॉनिक फ्रेंचाइज सीक्वल आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में ही शानदार हॉल बनाए रखा है और ये 150 करोड़ माइलस्टोन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ऑडियंस इमरान के इंटेंस परफॉर्मेंस और नॉस्टैल्जिक म्यूजिक फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रही है। नसरुद्दीन शाह के मेंटोरशिप के बाद परेश रावल के बेटे अनिरुद्ध का डेब्यू भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने पर्सनली कल ही आवारापन 2 देखी थी, बट इट वॉज ओनली जस्ट फॉर इमरान हाशमी, क्योंकि मैं उनकी बड़ी फैन हूं। तो सच बताओ तो मुझे मूवी बेहद पसंद आया, सो मैं आप सबको रिकमेंड जरूर करूंगी। दोस्तों वही दूसरी तरफ सनी देओल की पीरियड पार्टीशन ड्रामा बटवारा 1947 मास सर्कट्स और सिंगल स्क्रीन पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। फिल्म ने 40 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जिसमें शबाना आजमी के रोल और रो इमोशनल स्टोरी टेलिंग को क्रिटिकल अप्रिशिएशन मिल रही है। बॉक्स ऑफिस के इस धमाके के बाद चलिए सुनते हैं ये रोमांटिक मेलोडी ट्रैक।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों अब चलते हैं तिनसल टाउन के सबसे सेंसेशनल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट और कैरेक्टर रिवील्स की तरफ। रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग मेगा पैन इंडिया प्रोजेक्ट टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स को लेकर कियारा आडवाणी ने खुलकर बात की है। कियारा ने शेयर किया है कि उनका रोल उनके प्रीवियस कम्फर्ट जोन से बिल्कुल अलग और डार्क शेड लिए हुए हैं, जिसकी शूटिंग करेंटली फाइनल स्टेजेस पर है। माइथोलॉजिकल सिनेमा फैंस के लिए बड़ी खबर है। एपिक फिल्म महाकाली के मेकर्स ने अक्षय खन्ना के फायरसली इंटेंस कैरेक्टर शुक्राचार्य का लुक अनवील किया है और 24 अगस्त को इसका ग्रैंड टीजर ड्रॉप होने वाला है। राइटर कनिका दिलोन के नए सुपर नेचुरल ट्रेलर प्रोजेक्ट्स के लिए सैफ अली खान और कियारा आडवाणी की फ्रेश ऑन स्क्रीन पेयरिंग लॉक हो चुकी है, जिसे बॉलीवुड का एक इंट्रीगिंग कोलैबोरेशन माना जा रहा है। इन एक्साइटिंग अपडेट्स के बाद सुनते हैं हमारा ये अगला गीत।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: वेलकम बैक टू फिल्म गपशप दोस्तों. थिएटर्स के अलावा ओटीटी स्क्रीन्स पर भी कंटेंट का फ्लड आया हुआ है. शाहिद कपूर, कृति सानन और रश्मिका मंदाना स्टेरर मॉडर्न रोमकॉम ड्रामा कॉकटेल 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है. 2012 की ओरिजिनल वाइफ को मॉडर्नाइज करते हुए ये ट्राइंगल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप डायनेमिक ट्रेंडिंग लिस्ट पे टॉप पर चल रही है. करण जौहर होस्ट डिसेप्शन रियलिटी शो द ट्रेडर्स सीजन 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है. 20 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के बीच चल रही माइंड गेम्स और बिट्रियल ड्रामा सोशल मीडिया पर हैवी डिस्कशन कर रही है. अमिताभ बच्चन एक बार फिर टीवी और डिजिटल पर लौट चुके हैं अपने आइकॉनिक गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के साथ. स्ट्रीमिंग बस के बाद आइए सुनते हैं ये अगला एनर्जेटिक नंबर.

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। शूटिंग फ्लोर्स के आई कुछ डायरेक्ट खबरें हैं। कबीर खान की एक्शन हैवी अनटाइटल प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक्टर कार्तिक आर्यन को नी इंजरी हो गई थी। मुंबई के हॉस्पिटल में उनकी माइनर सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइज किया है। कार्तिक ने फैंस को रीअश्योर किया है कि वो जल्द ही सेट पर वापसी करेंगे। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन की हाई ऑक्टेन फिल्म राका को लेकर हॉलीवुड मेगा स्टार विल स्मिथ के पॉसिबल कैमियो की अफवाहें इंटरनेट पर छाई हुई है। हालांकि मेकर्स ने अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन सस्पेंस में रखी है। तो चलिए मूव्स और वाइब्स को मेंटेन करते हुए सुनते हैं ये अगला मेलोडियस सॉन्ग।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: एक लड़की थी, दीवानी से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: तो फिल्म बब्स ये था आज का सुपर लोडेड मसलेदार और स्टार स्तरित सफर फिल्मी गपशप पर। उम्मीद है आपको बॉलीवुड और ओटीटी वर्ल्ड की सारी ताजा खबरें पसंद आई होंगी। अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट को रेडी कीजिए, अच्छी फिल्में देखिए और पॉपकॉर्न एंजॉय कीजिए। मैं लेती हूं आपसे विदा, पर आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ। तो दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होते हैं दिल से दिल की बात।
1: आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका हो।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृष्ण जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे विफल रहा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए।
5: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट।
3: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
4: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu today. 6 chief ministers and Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators also are likely to participate in the meeting. High-ranking officials including chief secretaries and home secretaries from the southern states and union territories states will also participate in the event. The discussions will be held on various key issues including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes. The 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, will be held in Singapore today. The MEA said the 4th round of ISMR will enable both sides to review the progress of various ongoing initiatives and identify avenues to further strengthen India-Singapore collaboration. The 4th edition of India-Singapore Business Roundtable that serves as a strategic and advisory forum of key business leaders will also be held along with ISMR. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinzo Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defence equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Union Minister Shivraj Singh Chauhan will facilitate the housewarming of beneficiaries of 2,35,000 houses constructed during the current financial year under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen at Patna in Bihar today. At a program to be held at Babu Sabhagar, the Union Minister will also distribute sanction letters among newly selected beneficiaries. An arrest warrant has been issued against Krishnanagar MP Mahua Moitra on charges of making objectionable remarks that allegedly hurt religious sentiments and for not complying to judge's order to appear before the court in person. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. And in hockey, Indian women's team will face England today in the final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wegener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And in badminton, Indian shuttlers will be in action today in the pre-quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. Players will look to book their places in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से राष्ट्रीय समाचार। खबरों के बाद अब घड़ी ने इशारा कर दिया है हमारे पहले ट्रांसमिशन के आखिरी सेगमेंट का। जी हाँ, वक्त हो चला है आपके अपने मनपसंद शो का रेडियो ऑन डिमांड। ईटानगर के स्टूडियो में जब हम आपके मैसेज और रिक्वेस्ट खोलते हैं तो लगता है पूरा देश एक साथ रेडियो सेट पर बैठकर संगीत सुन रहा है। आज हमारे पास बिहार से ढेर सारे रिक्वेस्ट आई है, साथ ही बनारस के घाटों और आसाम के खूबसूरत शहरों से भी श्रोताओं ने अपनी पसंद भेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं संगीत का यह सिलसिला आपकी फरमाइशों के नाम। सबसे पहले मैसेज किया है नायडू शर्मा, घनश्याम तिवारी, गिरधारी और मुरली जी ने। ये रिक्वेस्ट भेजी है अपनी प्यारी माता जी के लिए। माँ के लिए ऐसी श्रद्धा और प्रेम देकर बहुत सुकून मिलता है। आप चारों भाइयों या प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे और माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बरसाते रहे। आपके आधार और डेडिकेशन के नाम सुनते हैं फिल्म आराधना का ये अमर गीत, चंदा है तू मेरा सूरज है तू।

दोस्तों सच में लता जी की आवाज और इस गाने के बोल हर बार दिल को छू जाते हैं। उम्मीद है बिहार से नायडू जी, घनश्याम जी, गिरधारी जी और मुरली जी आपकी माता जी को उनके बेटों का ये संगीतमय उपहार जरूर पसंद आया होगा। अब चलते हैं स्पिरिचुअल नगरी वाराणसी की तरफ। काशी के घाटों से विशाल, विजय, वैशाली और टीपू जी ने हमें मैसेज किया है और ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया है प्रमाली सिंह जी को। बनारस के श्रोताओं की बात ही अलग होती है, अपनापन और प्रेम हर लफ्ज में झलकता है। प्रमाली जी, आपके दोस्तों और परिवार की तरफ से ये खूबसूरत म्यूजिकल डेडिकेशन है। सुनते हैं फिल्म जीत का ये पॉपुलर ट्रैक तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, 90s के रोमांटिक दौर का ये नगमा हमेशा पुरानी यादें ताजा कर देता है। विशाल जी, विजय जी, वैशाली और टिपू जी, आपकी ये फरमाइश से स्टूडियो से सीधा प्रमाणित जी तक जरूर पहुंच चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर रुक करते हैं बिहार से। राजा नंदिनी खादू और रानी जी ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और ये गाना उन्होंने बड़े अपनापन से डेडिकेट किया है मोंटू जी के लिए। आप सबका आपस का ये बॉन्ड और दोस्ती सच में बहुत प्यारी है। मोंटू जी, आपके अपनों ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये खास गीत चुना है। लीजिए सुनिए फिल्म दिल का रिश्ता का टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक की जो सुरीली सुरों में पिरोया ये गीत दिलों के रिश्ते को सच में मजबूत करता है। राजा नंदिनी खादू और रानी जी मोंटू जी तक आपका ये गीत जरूर पहुंच गया होगा। अब बिहार से सीधे चलते हैं पड़ोसी राज्य असम की बोखाघाट से हमारे रेगुलर श्रोता और की गोस्वामी जी ने रिक्वेस्ट भेजी है। और की जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनका म्यूजिक टेस्ट हमेशा हाई एनर्जी और मॉडर्न ट्रैक्स पर फोकस रहता है। और की जी के डायनामिक चॉइस के नाम सुनिए मूवी आरआर का एनर्जेटिक ट्रैक शोले।

0: दोस्तों आरआरआर के बीट्स में जो जोश है वो सुबह की थकान को पल भर में दूर कर देता है। और कीजिए ऐसे ही हर रोज रेडियो के साथ बने रहिएगा। अब अगला पड़ाव है असम का ही खूबसूरत शहर गोलाघाट। गोलाघाट से रोमेश, रूनू और लकी जी ने मिलकर हमें रिक्वेस्ट भेजी है। आप तीनों ने वीकेंड वाली पार्टी वाइफ का एक बहुत ही आइकॉनिक डांस ट्रैक चुना है। गोलाघाट के हमारे इन दोस्तों के एनर्जेटिक मूड को सेलिब्रेट करते हुए आइए सुनते हैं फिल्म गुप्त का सुपरहिट ट्रैक दुनिया हसीनों का मेला।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों उदित नारायण जी का ये ग्रूवी नंबर हमेशा सबको झूमने पर मजबूर कर देता है। रोमेश रुनू और लकी, उम्मीद है आपका दिन इस बीट के साथ एनर्जेटिक रहेगा। दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की अगली फरमाइश, जो आई है हमारी एक और रेगुलर लिसनर सुनीता बसुमतारी जी की तरफ से असम से। सुनीता जी हमेशा बेहद सोलफुल और मेलोडियस नंबर सेलेक्ट करते हैं, उनका संगीत प्रेम हमारे स्टूडियो तक हमेशा उनके प्यारे संदेशों से पहुंचता है। सुनीता जी आपकी शानदार पसंद के नाम सुनिए ये हार्ट टचिंग इंडी क्लासिक कभी यादों में आओ, अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज में।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: The level has gone down. Do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों, कितना सुकून मिलता है ना इस गाने को सुनकर। सुनीता जी, आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गीत को चुनने के लिए। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके ढेर सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट अभी भी मेरे साथ है, पर समय की सीमा की वजह से आज और गाने शामिल नहीं कर पाऊंगी। पर वादा रहा, कल शो की शुरुआत में सबसे पहले आप ही के बचे हुए गाने में मैं जरूर मैं प्ले करूंगी। तो इसी के साथ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर हमारा सुबह का पहला ट्रांसमिशन यहीं पर समाप्त होता है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग और तकनीकी अभियंता एमजेडो। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा, अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे मांझ के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz से आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी?
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास तथा स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृषि जनकल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में इसके लिए 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जातीय संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वो विफल रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The 31st meeting of the Southern Zonal Council, chaired by the Union Home Minister Amit Shah, is underway in Kovalam near Chennai. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar, Kerala Chief Minister Satishan, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, Telangana's Deputy Chief Minister and Lieutenant Governor of Puducherry are participating in the conference. Discussions will be held on various key issues, including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes. The Union Cabinet has approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared four multi-tracking projects of railway covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
4: Five major decisions have been taken. The first four projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first four railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The fifth project is the construction of a four-lane highway from Muzaffarpur via Sitamadi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet.
2: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approved kiye.
3: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasad were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digital

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब

0: OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: नमस्कार आप सभी श्रोताओं को। दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर का ये खूबसूरत वक्त और साथ हो संगीत का तो फिर मजा ही कुछ और है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल तैयार है सुरों, गीतों और थोड़ी सी मस्ती से भरी एक हसीन म्यूजिकल जर्नी के लिए। तो चलिए आज के इस दूसरे ट्रांसमिशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम सुनते ही बॉलीवुड के रंग, फिल्मी यादें और मधुर नगमे याद आ जाते हैं। कार्यक्रम है फिल्मी लहर और आपके साथ इस खूबसूरत सफर में रहूंगी मैं, आपकी RJ बिंदुंग दिंदो मंच। दोस्तों, आज मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हिंदी फिल्मों के कुछ बेहतरीन गीत, कुछ ऐसे जो दिल को छू जाए, कुछ जो कदम थिरकने पर मजबूर कर दे और कुछ जो पुरानी यादों की एक प्यारी सी तस्वीर आंखों के सामने ले आए। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लीजिए और जुड़ जाइए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी इस प्रसारण सभा को आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत एवं तकनीकी अभियंता N विश्वजीत। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संगीत की इस रंगीन लहर पर सवार होते हैं। पहला गीत दोस्तों आज सुना रही हूँ आपको फिल्म विवाह से, चलिए सुनते हैं ओ जी जी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी लहर का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, और मैं हूं आपकी आरजे मंश। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं एक और गीत। फिल्म लगान से हम सुनेंगे आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में राधा कैसे न जले। और इस गीत को सुने और आप ना थिरके तो मुझे बताना। तो चलिए सुनते हैं राधा कैसे न जले।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों चलिए अब फिल्मी लहर में सुनते हैं कुछ मॉडर्न सॉन्ग। आपको सुनाना चाहती हूँ फिल्म धुरंधर का ये गीत शरारत।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: दोस्तों, अब फिल्मी लहर की इन सुरीली यादों से निकलते हुए चलिए बढ़ते हैं एक नए अंदाज, नए रंग और नए सुरों की तरफ। तैयार हो जाइए कुछ कूल, कैची और एवरग्रीन वेस्टर्न ट्यून्स के लिए, क्योंकि अब वक्त है म्यूजिक की एक और रंगीन दुनिया में कदम रखने का। अगला कार्यक्रम है वेस्टर्न मेलोडीज, कामसेन तांगजांग के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे मंच और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि मूड को म्यूजिकल बनाइए और एंजॉय कीजिए दुनिया भर के खूबसूरत वेस्टर्न मेलोडीज का ये सफर।
1: Hello everyone, this is Kamsen, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Today's session explores a more delicate side of emotion. It's about love, loss and longing. These are the songs that speaks of relationship in all their complexity. It's about moments of joy, separation, reflection and healing. So let's start today's session with a song that feels warm and grounded. It speaks of closeness and affection in a small, in a simple, heartfelt way. Here's Your Man by Josh Turner. Please enjoy.

0: And that was the final track for today, and I hope these songs kept you company and made your day just a little bit brighter. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच अम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is currently underway in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, are co-chairing the meeting. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework following Japan's revision of the three principles on transfer of defense equipment and technology. The meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasada were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development and sustainability. The ministers are on a visit to Singapore to participate in the fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable to be held today. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on working methods, India's Charge d'Affaires to the UN, Yojana Patel, said the need for reform is more pronounced and pressing than ever before. She noted that the UN's membership has increased significantly since 1945. And argued that the Security Council cannot continue to be shaped by the realities of that era. Bangladesh will hold its presidential election today with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. Voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Sangshad, from 2 to 5 p.m. today. The presidential election was necessitated

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और अब वक्त है एक और खूबसूरत संगीत में सफर का। फिल्मी गीतों से हटकर अब हम सुनेंगे कुछ ऐसे हिंदी नगमे जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने धुन, अपने अल्फाज और अपने मिठास से दिलों में खास जगह बनाते हैं। जी हाँ, अब आपके लिए पेश है नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग्स, जहाँ मिलेंगे सुरों के अलग रंग, भावों की खूबसूरत अभिव्यक्ति और ऐसे गीत जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो मैं हूँ आपकी आरजे मंच और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मूड बना लीजिए और तैयार हो जाइए कुछ बेहतरीन नॉन फिल्म हिंदी गीतों के लिए। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। ये गीत है फ्रेंडशिप का, ये गीत है उस प्यार का जो आप अपने दोस्त से करते हैं। दोस्तों गीत है यारो दोस्ती, जिसे गाया है केके ने, उनके एल्बम पल से ये गीत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये गीत।

0: जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में,
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों चलिए अब हिंदी नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गीत दूरो दूरो, जिसे गाया है परेश पहुजा और हरलीन सेट्टी ने। आशा करते हैं कि आप इस गीत का आनंद लेंगे।

इश्क सोच के गीता था, लेकिन गीता दिल देके दिल लैण दी लालच करी तू लिया, जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता।

दोस्तों चलिए नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में आपको एक और गीत सुनाती हूँ। और ये गीत दोस्तों 2000s के जमाने का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग है, और आज भी इसे सुनकर दिल ऐसे इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस गीत का एक बहुत बड़ा फैक्ट बहुत हाल ही में बाहर आया। गीत है दोस्तों तेरे बिन बाय रब्बी शेरगिल। व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये गीत शायद रोमांटिक है, रब्बी शेरगिल ने हाल ही में खुलासा किया था कि इस गीत को उन्होंने लिखा था अपने पिताजी के लिए। तो अब इस फैक्ट के साथ आप इस गीत को दोबारा सुनिए और बताइए कि आपका दिल धड़का कि नहीं, आपका दिल हिला कि नहीं, क्योंकि मेरा तो हिल गया।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: तो दोस्तों, नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग से कार्यक्रम के बाद अब समय है एक और खूबसूरत संगीत में सफर का। फिल्मी गीतों से हटकर दोस्तों,

वक्त है एक ऐसे एहसास, ऐसे खास कार्यक्रम का जो समर्पित है उन वीर जवानों के नाम जिनकी हिम्मत, हौसले और बलिदान की वजह से हम अपने देश में सुकून की सांस लेते हैं। कार्यक्रम है गीतमाला, एक विशेष विशेष संगीतमय श्रद्धांजलि भारतीय सैनिकों के लिए, उन वीरों को नमन जो सरहद पर देश की रक्षा के लिए हर पल डटकर खड़े रहते हैं। उनकी ताकत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम और उनके बलिदान को शत शत नमन। आज के इस खास कार्यक्रम में गीतों के जरिए हम याद करेंगे उन वीर जवानों को, उनके परिवारों को और उस जज्बे को जो कहता है देश सबसे पहले। और इस समर्पित सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत से, फिल्म बाजीराव मस्तानी का मशहूर गीत आयत अरिजीत सिंह की आवाज में। तो सुनिए, महसूस कीजिए और उन वीरों को दिल अपने दिल से याद कीजिए। ये गीत है हमारे देश के बहादुर सैनिकों के नाम।

और दोस्तों, गीतमाला में अब बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारा देश भारत अनेक भाषाओं, अनेक परंपराओं, अनेक धर्मों और अनेक संस्कृतियों का घर है। हमारी यही डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी यही अलग पहचाने हमें एक दूसरे से दूर भी कर देती है। और फिर याद आता है, हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। सरहद पर खड़ा जवान किसी एक धर्म, एक भाषा या एक प्रदेश की रक्षा नहीं करता, वो पूरे भारत की रक्षा करता है। तिरंगा जब लहराता है तो उसके नीचे हम सब एक है। इसी एहसास को एक गहरे सवाल के साथ सामने रखता है फिल्म पीके का गीत भगवान है कहा रे तू। तो आइए कुछ पल रुक कर सोचे, इंसान को बांटने वाली लकीरों से ऊपर उठकर उस इंसानियत को पहचाने जो हम सबको जोड़ती है। सुनिए भगवान है कहा रे तू, हमारे इस खास पेशकश गीत माला में। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी RJ मंच।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: और अब गीतमाला में वक्त है उस जज्बे को महसूस करने का जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। साथ चलने का जज्बा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का जज्बा। एक सिपाही की ताकत सिर्फ उसके हथियार में नहीं बल्कि उसके साथी के भरोसे में भी होती है। जब कदम से कदम मिलते हैं, हौसले एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी पार किया जा सकता है। और यही एहसास खूबसूरती से बयां करता है फिल्म लक्ष्य का ये प्रेरणादायक गीत कंधों से मिलते हैं कंधे। ये गीत उन सभी वीर जवानों को समर्पित जो एक दूसरे के साथ का हाथ थाम कर एक ही लक्ष्य के साथ देश की सेवा में खड़े रहते हैं। तो दिल में जोश भर लीजिए और महसूस कीजिए वो एकता, वो दोस्ती और वो हौसला। सुनिए फिल्म लक्ष्य का कंधों से मिलते हैं कंधे।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: और अब गीतमाला में पेश है दोस्तों आज के इस कार्यक्रम गीतमाला का आखिरी गीत, एक ऐसा गीत जिसके सिर्फ दो शब्द ही अपने अंदर एक गहरा संदेश समेटे हुए है, निर्भव निर्वैर। निर्भव का अर्थ है यानी मतलब है बिना किसी भय का, यानी निडर होके जीना, और निर्वैर का अर्थ है किसी से बैर ना रखना, किसी के प्रति नफरत या दुश्मनी ना रखना। कितने खूबसूरत संदेश है ये गीत कहता है, दिल में ना डर हो और दिल में ना किसी के लिए नफरत। यही तो हमारे वीर सैनिकों के जज्बे की एक तस्वीर है, खतरों के सामने निर्भव और इंसानियत के प्रति निर्वैर। देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोपरि बलिदान देने वाले हर वीर को आज हम दिल से नमन करते हैं। तो आइए इसी हौसले, शांति और इंसानियत के एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म कला का निर्भव निर्वैर।

जेकर साहिब मन हू ना विसरे ता सहल मरना हो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और अब वक्त है श्रोताओं से सीधा जुड़ने का, उनकी पसंद जानने का और उनकी फरमाइश पर उनके पसंदीदा गीत सुनने सुनाने का। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार फोन इन प्रोग्राम के लिए, जहां बातें भी होंगी, फरमाइशें भी होंगी और म्यूजिक भी होगा आपकी पसंद का। जी हाँ, अब शुरू हो रहा है हेलो फरमाइश, जहां आपकी कॉल, आपकी फरमाइश और आपकी पसंद बनेगी हमारे कार्यक्रम की जान। और आज आपके साथ है बोकी बागरा, जो आपकी कॉल्स लेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपकी पसंद की गीत आप तक पहुंचाएंगे। तो फोन के पास रहिए, दिल की फरमाइश तैयार रखिए और जुड़ जाइए आकाशवाणी ईटानगर के साथ। मैं हूं आपकी आरजे मांज और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो चलिए शुरू करते हैं श्रोताओं और गीतों से भरी ये खूबसूरत मुलाकात।
1: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239, यानी 03602292239।
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश
4: जी, प्यार भरा नमस्कार सर जी।
3: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
4: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो सर जी।
3: गौतम राय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए।
4: धन्यवाद सर जी।
3: जी सुनाइए, कैसे हो आप?
4: बहुत मजे में सर जी, लेकिन हमारे यहाँ भीषण गर्मी चल रही है अभी।
3: ओके जी जी।
4: 45 से 46 डिग्री तापमान सेल्सियस चालू है सर जी अभी।
3: बाप रे, जी जी जी जी।
4: गर्मी के मौसम में बस सहारा था आपका ईटानगर आकाशवाणी मिल रहा है सर जी।
3: क्या बात है।
4: बस आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनना और बस घर में बैठ के।
3: ओके जी जी जी, धूप से बचिए, बाहर अगर काम ना हो तो ना निकले।
4: बिल्कुल बिल्कुल जी। सर जी, यही तो हम आकाशवाणी की जानकारी भी सुनते हैं सर जी।
3: जी जी जी जी, हाँ जी
4: सर जी। हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है।
3: जी जी, हाँ जी।
4: तो हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में आकाशवाणी ईटानगर का फोन नंबर डाला जाता है।
3: अच्छा जी जी जी जी,
4: ताकि इस फोन नंबर को देख के सभी साथी आपके आकाशवाणी ईटानगर को फोन लगे।
3: जी हाँ जी हाँ जी, कब कब रिकॉर्डिंग होती
4: है। और जिन साथियों के फोन लगते उनको अगर किसी कारणवश प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला तो उनकी रिकॉर्डिंग हम हमारे ग्रुप में डालते सर जी।
3: अच्छा, ग्रुप में भी डाल देते हैं आप?
4: बिल्कुल, ताकि वो सुन सके।
3: जी जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो।
4: ये हमारे पूरे भारत में सबसे ऊपर हमारे एक्टिव श्रोता है आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनने वाले और कार्यक्रम में फोन लगाने वाले
3: जी,
4: सभी एक्टिव श्रोता है सर जी।
3: जी, सभी श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। तो गौतम जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
4: खास करके तो आज हमारा मित्र लोकेंद्र वर्मा जी और अल्ता भुजरे सर जी, सभी हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप श्रोता साथियों के लिए मकसद फिल्म का गाना सुनना सुनवाना चाहता हूँ सर जी।
3: ओके, मकसद फिल्म का कौन सा गाना?
4: वही गाना है किशोर कुमार ये जानकी की आवाज में, संगीत भक्ति लहरी का, और गीत के बोले हाय हाय हाय गर्मी है कहाँ है।
3: ओ हो हो, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला गाना ही आप सुनना चाहते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो इस गीत का आनंद आप भी लीजिए सर जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
4: सुस्पष्ट आवाज में आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुनाई देते हैं।
3: क्या बात है जी जी जी जी, हाँ जी,
4: बहुत ही सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते सर जी।
3: ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहुत सारे हमारे गाँव के रहो या हमारे ग्रुप सभी साथियों को हम प्रेरित करते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनो, बहुत अच्छे रहते हैं, जानकारी भी अच्छी रहती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो गौतम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: मैं काठाड़ जिला से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल वर्मन।
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: हाँ, थैंक यू सर, मेरा प्यार भरा नमस्कार लीजिए
0: जी। हमारी ओर से भी आपको बहुत ही प्यार भरा नमस्कार।
1: आपके
0: और
1: साथ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में थोड़ा
0: जी
1: सा बात करने का मौका मिलता है तो दिन भर मन अच्छा रहता है
0: क्या बात है जी, हमें भी
1: और
0: बहुत ही
1: मन
0: अच्छा
1: में
0: लगता है
1: खुशियाँ भी बढ़ जाता है सर।
0: जी। और सुनाइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो सर थोड़ा काम काज चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम आ गया ना,
0: जी हाँ जी,
1: तो हाँ, तो बारिश का मौसम आ गया तो थोड़ा सा घर का काम तो
0: हाँ
1: रहता
0: जी,
1: है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो
1: तो
0: आज कैसा है मौसम? आज बारिश हो रही है कि धूप?
1: मौसम नहीं सर, आज ये कल रात भी बारिश नहीं हुआ।
0: अच्छा, बारिश हुआ नहीं ना अभी? ओके
1: नहीं
0: ओके,
1: सर,
0: हाँ जी। तो कहिए, आज जवाहरलाल जी कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजा या दिल धड़कने वाला एक गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, हाँ जी।
1: वो गाना लिखा है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने। हम किसी से कम नहीं फिल्म से
0: ओके।
1: आशा जी और रफी जी के जुगल सर में वो गाना, ये लड़का हाय अल्लाह
0: हाय
1: कैसे है
0: अल्लाह, कैसा
1: दीवाना,
0: है दीवाना।
1: कितना
0: जी,
1: मुश्किल है तौबा किसको समझाना, धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते प्यार होता
0: प्यार
1: है।
0: होता है। जी जी
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: गाना
0: जी,
1: सुना दीजिए।
0: हाँ जी जी जी
1: राहुल देव बर्मन दा का सजाया हुआ जंत्र संगीत का सुर एक अलग तरीका से सुर का जंकर होता है।
0: जी
1: जी हाँ, गाना में बर्मन दा का वो सुर बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने वो गाना में सुर डाला है। मुझे
0: जी
1: वो गाना सुना दीजिए
0: हाँ जी, हाँ
1: और
0: जी।
1: आप अच्छा रहे, सुस्त रहे, ये
0: और
1: शुभकामना करते हैं।
0: डेडिकेट कीजिए।
1: आओ सरी,
0: हाँ जी,
1: डेडिकेट तो करना चाहता हूँ सर,
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: आपके
0: बहुत
1: और भाई
0: धन्यवाद।
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, और भुवन संगीता देवना अविनाश भैया है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए
0: सभी
1: सर।
0: को आप सुनाना चाहते हैं
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का
1: हाँ
0: गाना।
1: धन्यवाद सर,
0: ओके,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: परम आदरणीय बागरा साहब, स्वागत है। प्रेम प्यार में नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से और आकाशवाणी ईटानगर परिवार की ओर से।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मैं
0: जी
1: आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मानेवर, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छे में हूँ, मजे में हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छा हूँ। आप
0: मौसम?
1: लोगों का स्नेह है, शुभकामनाएं हमारे साथ में है।
0: जी आप भी
1: और
0: अच्छे हैं, मौसम
1: मैं
0: भी बढ़िया होगा।
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हुए आनंद से घर परिवार में रहता हूँ
0: जी
1: और मौसम का आनंद ले रहा हूँ। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम कुछ उलट पलट उलट पलट हो रहा है। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, और
0: ओके।
1: अभी उमस भरी गर्मी से हम परेशान हो रहे हैं। आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, बहुत ही सुखद अनुभूति होती है।
0: क्या
1: आपका
0: बात है।
1: स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है और हमारा भरपूर मनोरंजन होता है।
0: और बच्चे सुनते हैं रेडियो या फिर आप अकेले ही सुनते हैं?
1: मैं ही अकेला सुनता हूँ,
0: अच्छा
1: उनको जो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।
0: अच्छा वाह वाह वाह, क्या बात है। तो शारदा प्रसाद जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। ये रात भीगी भीगी ये मैं सिर जाए, उठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे
0: जी,
1: अनुरोध करना।
0: चांद प्यारा प्यारा और प्यारे से गीत को आप किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सर्वप्रथम मैं याद करता हूँ अपने परम मित्र वागरा साहब से,
0: बहुत बहुत
1: को जो
0: धन्यवाद
1: ईटानगर से हैं।
0: जी।
1: हमारे मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव, राजू लवानिया जी हैं, टेक चंद्र अग्रवाल जी, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पुष्कर नाथ जी और पूरन वर्मा, इन सभी दोस्त साथ में।
0: जी
1: केशव प्रसाद शर्मा है, विद्यारत्न शर्मा जी हैं और प्यारे दोस्त विजय कुमार पांडे जी हैं, इन सभी दोस्तों के साथ में कैसा खूबसूरत गीत
0: जी
1: आकाशवाणी ईटानगर से सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी, सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय से धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार। और कहिए, कैसे हैं आप
1: जी। मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और मौसम भी बढ़िया होगा आपके वहाँ पे सिक्किम में?
1: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर, तो अभी
0: अच्छा
1: थोड़ी देर
0: अच्छा
1: रुक
0: अच्छा
1: गया है अभी तो। जी
0: ओके। हाँ, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो ही रही है जी,
1: जी
0: मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो हो जाए परिचय
1: जी मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ।
0: जी। अर्जुन
1: दिल्ली
0: प्रधान जी,
1: तो जानते होंगे
0: जी हमारे प्रिय श्रोता, सभी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो बताना जरूरी होता है ना।
1: जी,
0: जी जी
1: परिचय
0: जी
1: देना
0: हाँ जी,
1: पड़ता है ना
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: तो अर्जुन जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: अभी तो ये बारिश का सीजन,
0: जी
1: तो बरखा याम यानी कि रेनी सीजन बोलते हैं
0: जी जी
1: ना।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और इसी उपलक्ष्य में सुना दीजिएगा, मोरा प्रेम से टिपू टिपू बरसा पानी।
0: ओके। टिप टिप बरसा पानी, वहां तो पानी बरस ही रहा है। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी, और पूरे ईटानगर परिवार को डेडिकेट है।
0: जी
1: और हम मेरा दोस्त श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौरदास लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कोठारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
0: जी।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए
0: सभी को
1: डेडिकेटेड
0: आप
1: मिलता
0: जी
1: है
0: सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: बहुत अच्छी है सर, बस गर्मी पड़ रही है सर ज्यादा।
0: ओके, थोड़ा गर्मी से बच के रहिए ताकि आपको।
1: 44-43 चल रहा है हमारे यहाँ।
0: जी, ये तो भयंकर गर्मी है,
1: जी
0: तो गर्मी से बचिए और पानी खूब पीजिए।
1: जी
0: जी, और घर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए।
1: जी सर।

0: खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हरी नारायण गुजर बात कर रहा हूँ सर।
1: हरी नारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ सर।
1: और मौसम?
2: मौसम तो गर्मी का है सर।
1: गर्मी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: गर्मी बहुत पड़ गई सर।
1: ओके, हमारे यहाँ तो अभी बारिश है।
2: हाँ, आपके यहाँ तो बारिश होती रहती है 12 महीनों।
1: हाँ जी, तो थोड़ा धूप से बचिए।
2: बचने का तो सर कोई चांस ही नहीं है।
1: चांस ही नहीं है। ओके ओके, बाहर तो निकलना ही है।
2: बचने का तो कोई चांस ही नहीं है।
1: जी जी जी,
2: निकलना तो है। धूप में मगर थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे सुबह के टाइम में जल्दी घर आ जाते हैं, फिर शाम के टाइम में थोड़ा लेट निकलते हैं घर से।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छी बात है।
2: ये बचाव अपना रहता है बस।
1: जी जी जी जी,
2: गर्म हवाएं बहुत तेज चलती दोपहर में।
1: ओके, तो घर में रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश सुनिए।
2: वो तो सुनता रहूं ना, हमको इतना का को सुनते रहते हैं सर।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और सर आपसे बात होती तो और भी आनंद आ जाता है।
1: क्या बात है, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जी।
2: सर बहुत बुरा नाम है सर आपको, मजा आता है मेरे को बात करने में। आपको फरमाइश बताया देता हूँ सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी,
2: फिल्म का नाम है मेरी बीवी का जवाब नहीं, और गाने का टाइटल सॉन्ग है सर ये।
1: अच्छा, मेरी बीवी का जवाब नहीं,
2: वो लाजवाब ही है, जवाब नहीं है।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
2: सर दोस्त है दिल्ली से, रमवीर जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, नरेश प्रजापति जी हैं, इसके अलावा गया लोधी, मंगला चंदेल जी हैं और प्रेमराज विश्वकर्मा जी हैं। सर आप भी हमारे साथ इस गाने को सुनिए, बड़ा
1: जरूर
2: मजा आएगा।
1: ओके, जरूर सुनेंगे, कभी सुना नहीं मैंने ये गाना, तो इस बार पहली बार सुनूंगा जी। तो हरिनारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: ओके सर, धन्यवाद।
1: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। शुक्रिया,
0: जी तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी,
1: धन्यवाद।
0: और कैसे हो आप?
1: आप ठीक है? आप कैसे सर जी?
0: जी मैं तो बढ़िया हूँ। आपके वहाँ मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम क्या, गर्मी बहुत है अभी हमारे
0: गर्मी?
1: इधर। थर्टी
0: ओके,
1: एट थर्टी फोर्टी का
0: बाप
1: पारस है
0: रे।
1: हमारे इधर।
0: ओके, तो गर्मी से थोड़ा बचिए।
1: जी,
0: और काम ना हो तो घर पे रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिए।
1: हाँ सुनते मोबाइल ऐप
0: ओके, ऐप पे
1: फिल्म
0: सुनते हैं आप। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: बनावा है कारवा
0: ओके, कारवा फिल्म का कौन सा गाना?
1: गोरिया कहा तेरा देश रे।
0: ओ जी, बहुत ही बढ़िया गीत चुना है आपने। और किन लोगों को सुनाना
1: सबसे
0: चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम रायबोले जी, सुनील दास जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावनकर जी, पीएसआई राजशेखर जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाडे जी, विकास शेड़के जी, श्रीकांत भंडारे जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो तुकाराम जी, कॉल
1: शुक्रिया
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। सर, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: जी भगवान सिंह जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ सर, बहुत सारे दिन हो गए सर, 5-6 महीने से ऊपर हो गए।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं बिजी थे आप?
1: जी सर, मकान बन रहा था इसलिए बिजी थे सर।
0: ओके ओके ओके।

0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बन गया या फिर
1: सर
0: अभी?
1: कंप्लीट हो गया है, हमने कृषि फार्म पर खेत पर बनाया है
0: ओहो, क्या बात है, क्या बात
1: जी।
0: है जी।
1: सर इस वक्त तो सर हमारे इधर 40 टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी बहुत काफी पड़ रही है सर हमारे इधर
0: बाप रे, जी,
1: जी, और लू भी चलती है दिन में सर
0: ओहो, बात
1: जी। हाँ सर
0: कर।
1: पानी का ज्यादा पीते हैं और गमछे वगैरह बांध के खेत पर निकलते हैं, गर्मी का
0: ओके,
1: पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपना अपना भी ख्याल रख रहे हैं क्योंकि गर्मी बीमार कर देती है अगर
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: पड़ती है
0: जी
1: तो सर
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। तो
1: तो सर मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: आपको,
0: बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है मोहरा, वो गाने के बोले ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और हमारे लोकेन्द्र वर्मा जी है उज्जैन से, उनको डेडिकेट रहेगा, और
0: ओके,
1: रमेश प्रजापति, केसी सिंह राजपूत।
0: ओके। तो भगवान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद सर।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, फरमाइश। नमस्ते, खम्मा गणी हुकम। कैसे
0: नमस्कार खम्मा घणी
1: हो सर जी?
0: जी, बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापत।
0: ओके मोहनलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: धन्यवाद जी, शामिल करने के लिए भी धन्यवाद।
0: जी। और गर्मी?
1: हाँ, तो 45 डिग्री के आसपास है और अभी आंधी का अलर्ट भी हो चुका है।
0: ओके बाप रे बाप रे। जी जी जी
1: जी
0: जी
1: आंधी, और आंधी आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी।
0: अच्छा, अभी तक बारिश हुई नहीं आपके वहाँ?
1: नहीं, बारिश तो 2 महीने कम है, लेकिन अभी मतलब आंधी आती रहती है।
0: अच्छा। जी। तो अपना ख्याल रखिए और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: हाँ, फिल्म का नाम है सर जी उपकार। उपकार का कोई भी गीत
0: उपकार फिल्म का कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी।
0: जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: माणक दरिया, उषा बाला देवी प्रजापत और हेलो फरमा शेर का रेडियो के तमाम साथी।
0: तमाम साथियों को आप सुनाना चाहते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार खम्मा घणी सा।
0: नमस्कार खम्मा घणी, कैसे हो?
1: बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया एकदम।
0: बढ़िया है
1: आप बताइए।
0: जी, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी
0: और
1: जी
0: मौसम का हाल क्या है?
1: मौसम के भी गर्मी है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर चल रहा है 45 के आसपास।
0: बाप रे।
1: कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही
0: जी
1: है सर।
0: जी जी जी
1: आपके वहाँ का?
0: हाँ, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है।
1: अरे वाह क्या बात है, थोड़ी सी
0: जी
1: हमारे भेज दीजिए।
0: हाँ जी, जरूर भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गाने के साथ साथ मैं आपको बारिश भी भेज देता हूँ।
1: हाँ,
0: जी
1: और मैं तो देखिए ये है कि बेताब रहता हूँ इस फोन इन प्रोग्राम के लिए कि
0: जी
1: कब पोके बागरा जी से बात हो, कब फरमाइशी गीत बजे। और मैं तो कई अरसे से, कई सालों से आपके आकाशवाणी
0: जी
1: ईटानगर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कई दोस्तों की मंडली थी वो तो कहीं ना कहीं तक कम हो गई, कहीं अपने अपने काम धंधों में फंसे हुए, कोई अपने फैमिली
0: हाँ
1: को रिलेटेड
0: जी
1: समस्याओं में
0: जी
1: फंसे, कोई कोई अपने धंधे
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: बिजनेस में फंसा हुआ। लेकिन मैं नहीं भूलता, मुझे सुनना
0: ओके,
1: आया
0: क्या बात है, क्या बात है। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी, इसी तरह से ये प्यार
1: और
0: बनाए रखें।
1: मैं नाम नहीं बताया मैंने, मैं भवानी सिंह राठौड़ सुजानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ, आपका
0: जी जी
1: नियमित
0: जी
1: श्रोता।
0: जी जी जी मुझे तो पता है, लेकिन आप
1: आज आज मैं ना इस प्रोग्राम में आ, चलो
0: चलो।
1: मैं फेवरेट गानों में ना एक है कुमार सानू अलका याग्निक का, कोई दोनों का मैच करता हुआ गाना हो ना ये बजा
0: अच्छा
1: दीजिए।
0: अच्छा अच्छा जी जी जरूर। मैं
1: हाँ, और ये
0: जी
1: गाना आपको और पूरी आकाशवाणी परिवार को डेडिकेट है मेरी ओर से। ठीक
0: ओके, तो कॉल करने के लिए
1: है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपकी
1: शुक्रिया।
0: पसंद का गाना।
1: ठीक है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239।
0: हेलो फरमाइश।

0: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to Rs 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas, including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. The India-Japan Defence Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, making India defence technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Minister Rajnath Singh said two leading democracies in Asia, India and Japan, shared a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. Mr. Singh highlighted that the maritime lifelines are facing growing vulnerabilities and the efforts to ensure freedom of navigation, overflight and unimpeded lawful commerce are not just an economic necessity but a strategic imperative. He said the security of the Indian Ocean and the Pacific Ocean is deeply interlinked. The minister said a close alignment between India's Mahasagar vision and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before.
1: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries, but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.
0: Mr. Koizumi expressed appreciation for the condolence to all those affected by the earthquake in Kumamoto Prefecture. He also appreciated the support provided by the Indian Navy during the medical emergency that occurred on a Japan Maritime Self-Defense Force vessel.
2: Raksha Mantri ji, namaste.
3: I would like to express my appreciation for the support provided by Indian Navy for the medical emergency which took place on the JMSDF vessel. This symbolizes our relationship of cooperation that when we have trouble, we help each other.
0: Recalling the Japan-India joint statement issued by the leaders of the two countries in July this year, the two ministers affirmed their commitment under their leadership to further deepen defense cooperation to realize a free and open Indo-Pacific. The two ministers affirmed that they would strengthen coordination between both sides for the protection of sea lines of communications through mutual visits by naval ships and units, joint exercises, personnel and subject matter expert exchanges, and logistical support, including use of ports, maintenance and repair facilities. The two ministers welcomed the steady expansion and deepening of bilateral exercises conducted by Japan and India, including the Japan-India Army exercise, Dharma Guardian, and the Japan-India Maritime Exercise, JMEX. Earlier this morning, Japanese Defense Minister laid a wreath at the National War Memorial. He later received a ceremonial guard of honor at Manekshaw Center in the presence of Defense Minister Rajnath Singh. The 31st South Zonal Council meeting under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah began in Kovalam near Mamallapuram with leaders and senior officials from southern states discussing interstate disputes, security and developmental priorities. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Kerala Chief Minister Satishan, Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bharti Vikramarka, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, and Lieutenant Governor of Puducherry, Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands, Administrator of Lakshadweep, administrators and senior officials of various ministries are attending the meeting. More from our correspondent.
4: 31st South Zonal Council meeting under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah began in Mahabalipuram near Chennai today, with the leaders and senior officials from southern states discussing interstate disputes, security and development priorities. The Zonal Council meeting provided a systematic mechanism and an important forum for dialogue and discussion on issues affecting two or more states or the center and the states. Discussions are underway on broad issues of national importance, which include the implementation of fast-track special courts for the speedy investigation and early disposal of the cases of rape against women and children, as well as water sharing, education. The broader agenda included strengthening of interstate cooperation, internal security, economic growth, industrial investment, education and healthcare. Chidambaranathan for Akashwani News.
0: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah said the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into two parts for the sake of appeasement. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
5: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into two parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress Party.
0: Tamil Nadu Higher Education Minister P. Vishwanathan today clarified in the State Assembly that the government had no intention to curb the legitimate rights of students or youth in the state. In a reply to the call notice on an earlier circular to colleges on students' demonstrations, the minister said that a circular was issued in the light of maintaining discipline, law and order in the state. He said some mistakes were corrected and the circular has been reissued. The earlier order issued to all government colleges has been withdrawn. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the keys of 2,35,000 constructed houses to beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen in Patna. At a program held at Bapu Sabhagar, Mr. Chauhan also distributed sanction letters among newly selected beneficiaries. Chief Minister Samrat Chaudhary, Deputy Chief Ministers Vijay Kumar Chaudhary and Bijendra Prasad Yadav and Rural Development Minister Shravan Kumar were also present on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The fourth round of the Indo-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, was held in Singapore today. Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT, Jitin Prasada, participated in the meeting. The ministers held discussions on further strengthening bilateral cooperation in strategic and emerging areas, including digital technology, digital public infrastructure, semiconductor supply chains, artificial intelligence governance, and cybersecurity. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the discussions aimed at deepening the comprehensive strategic partnership across advanced manufacturing, fintech, digitalization, healthcare and sustainability. The meeting also focused on giving fresh impetus to cooperation in digital skill development. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on working methods, India's Chargé d'Affaires to the UN, Yojana Patel, said the need for reform is more pronounced and pressing than ever before. She noted that the UN's membership has increased significantly since 1945 and argued that the Security Council cannot continue to be shaped by the realities of that era. India reiterated its demand for expansion in both permanent and non-permanent membership with greater representation for the Global South. Patel said reforms should be pursued through text-based negotiations with clear milestones and deadlines. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. Voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Shangshad, from 2 p.m. to 5 p.m. today. A report.
6: Alamgir is the candidate of the ruling Bangladesh Nationalist Party BNP, while Colonel Oli Ahmed is contesting as the candidate of the Jamaat-e-Islami-led 11-party opposition alliance. The Election Commission declared their nomination papers valid on August 16th. Speaking at the BNP parliamentary party meeting, Alamgir appealed to the BNP lawmakers to vote for him in today's presidential election. The president-elect will take oath as Bangladesh's new president tomorrow evening at the Darbar Hall of the Bongo Bhavan. The presidential election was necessitated after Mohammad Shahabuddin, a close aide of deposed Prime Minister Sheikh Hasina, resigned last month on health grounds before completing his five-year tenure. Jagyasa Pandey from News Desk.
0: Russia launched an overnight missile barrage on Ukraine's capital Kyiv, killing at least six people and injuring 33 others. Ukraine's emergency service said the strikes hit 12 locations across three districts, damaging residential buildings, a medical facility, and an educational institution. The attack comes as Russia intensifies ballistic missile strikes on Kyiv, putting further pressure on Ukraine's limited air defense capabilities. Meanwhile, Ukraine has stepped up long-range strikes against military and strategic targets deep inside Russia. In Kerala, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. There are also warnings of high waves and the swell surge phenomenon. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
7: The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. Special caution has been advised in the areas of Chombala Ramanatagara, Vallapattanam Newmahi, Kunjathur Kottakunna, Kapil Podiyur, Chellanam Arikil Jetty, Munambam Maruvakkada and Aattupuram Kodungallur. Midhi M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: The India Meteorological Department has issued orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and East Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, India's women's doubles duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat seven seeds Rin Iwanaga and Kieneka Nishi of Japan in straight games. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Trisha Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
8: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है
6: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है
8: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है
6: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग आंतरिक सुरक्षा आर्थिक विकास औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण जंगलों में आग की रोकथाम आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है
9: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
10: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
9: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
11: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
9: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
12: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
9: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
13: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
9: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
14: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
9: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां बात होती है दिल से दिल तक. और अब तैयार हो जाइए एक ऐसे म्यूजिकल सफर के लिए, जहां हर गीत के साथ लौटेंगी कुछ खास यादें, खूबसूरत पल और दिल के करीब वो पुराना जमाना. जी हाँ, अब वक्त है 90s के सुपरहिट गानों का. वो दौर जब म्यूजिक में रोमांस था, मेलेडी थी, मस्ती थी और हर गीत की अपनी एक कहानी थी. चाहे पहले मोहब्बत की यादें हो, दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल या रेडियो पर सुने हुए वो पसंदीदा नगमे, 90s के गाने आज भी दिल को वैसे ही छू जाते हैं. तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यादों की किताब खोल लीजिए और तैयार हो जाइए एक नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल राइड के लिए. मैं हूं आपकी आरजे मंच और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ. तो चलिए चलते हैं वापस उसी खूबसूरत दौर में. शुरू करते हैं हिट्स ऑफ 90s. दोस्तों, हिट्स ऑफ 90s में आज पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो है फिल्म परदेश का. कुमार सानू की आवाज में चलिए सुनते हैं दो दिल मिल रहे हैं.

दोस्तों, हमने हिट्स ऑफ 90s की शुरुआत की बहुत ही रोमांटिक साइज गीत के साथ, और 90s के इस खूबसूरत सफर में अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें दर्द भी है, मोहब्बत भी, और जुदाई का वो एहसास भी जो सीधा दिल को छू जाता है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत अपने दौर का सबसे यादगार गानों में से एक है। गीत है तड़प तड़प के। इस गीत की आवाज में छुपा दर्द और इसकी दिल को छू लेने वाली मेलोडी आज भी उतनी ही ताजा महसूस होती है। तो कुछ पल के लिए अपने दिल को इन जज्बातों के हवाले कीजिए। चलिए सुनते हैं तड़प तड़प के, सिर्फ हिट्स ऑफ 90s में, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: Hello.
1: Hello.
0: दोस्तों चलिए अब सुनते हैं हिट्स ऑफ 90s में अगला गीत। हम सुनेंगे फिल्म मृत्यु दंड से अलका याग्निक की आवाज में कह दो एक बार सजना। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस गीत का आनंद लेंगे और आपको पसंद आ रहा होगा हमारा हिट्स ऑफ 90s का कार्यक्रम सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर पर।

दोस्तों, चलिए हिट्स ऑफ 90s में अब सुनते हैं एक और आखिरी गीत। दोस्तों, हम सुनेंगे फिल्म कृष्णा से झांझरिया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, और जिसके बाद होगा मिश्मी कमाल श्रोताओं का कार्यक्रम, और फिर

fik le nai wiching wan ru ne ra ne ka jaga le bang set tong dom ning nei kara wiching an an la he kara tinang hera ti blong la ka nei son ka samang ne krem ning tinang hera wiching an meeting he he he fi ka wiching wan defense equipment technology ne lit ne ka ru ne ra ne ka make in india he to tra dom ning wei ka japan nang indian pa road map nak defense security san pa tagat ra samang dom to din ang hera union minister kirin rijiji ka chinese san atang arnochal gungle mu de ne khre po to anlai wan ko mo hi khrem tan ne dom mai kara to tin ang gungle tan ne kara to chinese to lai hai dat chinese san india gungle 60 arnochal pradesh gungle 60 kilometer gungle ko dom tan ne kadom to hi wa an wan ne gai dom ko lai felaim ra dom mai kara तो सोशल मीडिया है वन तो फेक वीडियो फैलाने का तो चाइनीज वन अरुणाचल प्रदेश घूमना हूँ डरने घूम घूम तो डोम तीन अंग है रखा ये डोम तो अन अनलाइक अनलाइक तो तीस सीरियस लग डोम तो न्या न्या को फेक वीडियो ट्राने का एडिट करने का सान डोम सान नेटी एक्शन लग डोम तो वहीं करा तो लोकल तो मिसने खेम तो डोम तो सुबंश्री है ला तो Chinese sunsan wan LOC land cross karne ka takshin village gungna hulad ne ka dom ta dom anlai ne to glathe sit ka thong ne thong winglal ne thong mata da wa hai to hulaw am ho one ek check ka mata da so ka action la ma dom ta nya gyum tam san me wi kara to tin anglai wan minister of RD and panchayat raj ojing takshing kango we new conference arunachal pradesh state effects bank for inaugurate kuka dan har lagan le wahi kara department for logo nek tan khan kada so kara meeting kuka da daw an uni sa to an department meeting wan to to ground level le kam da kat sat samang dom ta wahi ka glad lung hai to ya wan kam sat sam hi nek sat sat thong net ka dom ta wan kara to an cooperative society wan to glad lung hai to ग्राउंड लेवल एक्सेट काम करने का ग्लास चौंस ने बेनिफिट कर दोम था तो तुम ही करा वाई डब्ल्यू रिंकू का टावांग डिस्ट्रिक्ट का तो वन स्पेशल इंट्रेंस रिविजन समुद्र ने का खाए पो वहीं का तो अन एस आर आई वन इलेक्ट्रोलोडक सत समुद्र दोम था तो अन्य वन सत गति वन कंबुई फॉर डॉक्यूमेंट्स वन को सर्च चेक करने का रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड था दोम था अन रिकॉर्ड वन माल पाग ने काम थुन महे तो तीला गलतीत को महे ता मै ला हिला का सत सत तुतरा डोम ता नी गरा अन तावांग ने तो समुन नुन एस आर आई वन तो ग्लाट टू ग्लाट को ही को बी एल ओ सन ने को ग्राउंड लेवल ले काम कर करना दा वही करा स्मिति रिंगू वी सो जो तो बी एल ओ सन सन ग्राउंड लेवल ले ता मै लाइ का सत का गलती में सम काम कर दम सन ने वी को सुम पाहे का को टेटन मंग ने क्रे का तो तीन अंग लाइवन तो सुबन श्री है वन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी सन वन ओ ओए डीसी कॉन्फ्रेंस रूम है वन मीटिंग को लड़ा दा तो अन मीटिंग वन तो द प्रोजो है वन ग्लाक लुंग सिद दुतरा है कन नता दा तो अन मीटिंग वन तो जिला परिषद डेवलपमेंट सन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट न करारू ने का 2026 न 27 फा finance financial one take over ko roda ni kara to an meeting kat ne ka doing man ni tong pha sarkar glat wi to shan kam kam tu kam sam san ne kam sut tong ne ka dom ta ni kara to an pha wan to ne na representative pan chen ka tom san ni to financial fashion handover kar ne ka wing ba fan nang pine ka hai glat lung मेंटेन करने का फी कटा था तो अन मेन मीटिंग फाउंडर सुबन श्री हवन तो अन विंग पगलात लोग शोंग थाट ने का कुका था वही करा तो अन ओ ओए पाकिस्तान नंग इंडिया हॉकी मैच खेली कटा था हमने वन इंडिया का पाकिस्तान वेन 5-3 का हरे कटा था हाय यो नेदरलैंड स्टेडियम है दा मसाव करा अन्य वन तो इंडियन चोंग प्रो सन्वी योंगे गोल्ड मेडल की नाक सब मागठा नियोंग तो वन पेनल्टी है काउट समता दा और तो उन सब मार्ट डॉकिंग लाइक उन सॉन्ग डी फाइम कई आम तो
tanzai ti gachning kman jae to

本来扬州光幕做班官也难，一乱官平和者转人过派下变痕，现在

北边庙峰混在爬山家应当崩龙边啊爬走着看爬行空

为谋行，邓嘎西诺满囊上了火鼓索，每诺的行开怕鼓么某某某某某行掉。

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। अब वक्त है दोस्तों फिल्मी दुनिया से कुछ बड़ी और ताजा खबरें का, और हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड अपडेट्स। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है और हम वो सभी ड्रामा लाते हैं आपके लिए सबसे खास, सबसे पहले आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहली खबर आ रही है कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल से। फिल्म के एक्टर इंदिरा कुमार और प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया पर 1.50 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है। मुंबई की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर विकास बालदेवराज सहानी ने आरोप लगाया है कि 2007 की फिल्म धमाल के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल और कॉपीराइट राइट्स उनकी कंपनी को दिए गए थे, जबकि कुछ राइट्स पहले ही किसी दूसरी कंपनी को दिए जा चुके थे। इस मामले में 17 अगस्त को मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। मारुति इंटरनेशनल ने कहा है कि संबंधित पार्टी के साथ बातचीत जारी है और मामला आपस में सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं इमरान हाशमी की फिल्म अवारा पंतू की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। 6 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 153 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इंडिया में इसका नेट कलेक्शन 107.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके साथ ही अवारा पंतू इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी कमाई करने वाली सोलो लीड फिल्म बन गई है। फिल्म की रफ्तार में वेडनेसडे को थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन फिल्म पहले हफ्ते में 160 करोड़ के आंकड़े को पार करने की राह पर है। वहीं सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर बतवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है। 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने छठे दिन में सिर्फ 1.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपए हो गया है। पार्टीशन के दौर की कहानी पर बनी इस फिल्म में शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। तो बॉलीवुड की दुनिया में फिलहाल एक तरफ अवारा पंतू की बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ बंटवारा 1947 को दर्शकों तक पहुंच बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और धमाल से जुड़ी राइट्स कंट्रोवर्सी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा तेज कर दी है। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक। तो दोस्तों, जब हम आवारापन तू की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना बॉलीवुड अपडेट्स में आज सुन लेते हैं आवारापन तू की कुछ हिट्स। सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लाडो, जिसके बाद हम सुनेंगे बेजुनून। तो चलिए मजा लेते हैं इमरान हाशमी की फिल्म का सॉन्ग्स, क्योंकि सभी को मालूम है कि इमरान हाशमी की फिल्म हिट हो ना हो, फिल्म के गाने तो जरूर सुपरहिट होंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये दो गीत।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वंचित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और वक्त है दोस्तों हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की एक छोटी से कारवा का। दोस्तों, इस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के सेगमेंट में चलिए आपको सुनाते हैं आज युग पुरुष फिल्म का एक नॉन स्टॉप म्यूजिकल रिले।

तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस सेगमेंट के अंत में। आशा करते हैं कि आप इस फिल्म के म्यूजिक आपने पसंद किया, और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के दोपहर प्रसारण सभा के अंत में। अब हमारी अगली प्रसारण सभा में आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में आरजे अपर्णा। अब मुझे यानी आपकी आरजे बिंदुम दिंदो मंच को दीजिए इजाजत। में आशा करती हूँ दोस्तों कि आपका शाम सुहाना हो और आप हमेशा सेहतमंद रहे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम तांगसा भाषा में समाचार, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत एवं तकनीकी अभियंता एन विश्वजीत। तो दोस्तों टाटा बाय बाय अलविदा।

फिर आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचुसा डुबा रंग बलई पांग हजने क्रोक पांग अगस्त जलिंग रंगखु तारीख और रंगजा बलई बी खुमी थोड़ो यामसो तंगसा प्रोग्राम तफांग रहे मचु रंगजा सौसाई तारीमंग से रुंग रोकवांग कुनकामा माइर इंडिया ने जापान मुंगवांग डिफेंस मिनिस्टर वाने पो मचुसा न्यू दिल्ली नंग रफान रो मीटिंग नंग मुनई तुंग डिफेंस कौनंग रोम सेंग नईपर म इंडो पेसिफिक रीजन हा नंग सिक्योरिटी प सेंग म तानर अचोंग सुरकई वंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू र मनेसा फांत नंग अरुणाचल प्रदेश नंग क्रोकसाई किलोमीटर चान मुंग नंग चाइनीस मई योग मोर थ्रुंग प्रप अजिया हंगरुक्त अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट नंग ताक्सिंग सर्कल नंग लाइन ऑफ एक्यूट कंट्रोल LAC मुंग नंग चाइनीस सिपाही मई योग मोर रुंग प्रप अजिया हंगोफांत अरुणाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट ने पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग मनेसा नाहरलगुन नंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट अपेक्स बैंक लिमिटेड वन अन्या कॉन्फ्रेंस हॉल खोलित परजु कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वन अन्या लोगो तफांग तो प्रहाई मिनिस्टर कॉर्पोरेशन

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तानसा समाचार। अगर आप हमारे तानसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप मेरे साथ अपना सफर चंद लम्हों का बिताना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम को। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का अरुण एफएम के आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके राह के हमराही होंगे संचरण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम और स्टूडियो तथा एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं, यानी कि आप सबकी अपनी आरजी अपना रहेगी आप सभी की खिदमत में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लेकिन लेकिन सबसे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आप सभी के फेवरेट आरजे मांज का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर मनोरंजन की है। तो शुक्रिया आरजे मांज मुझे स्टूडियो हैंडओवर करने के लिए। और दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Good evening, Itanagar.

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के इस सेगमेंट में। ये वो कंपोजिट प्रोग्राम होता है जहां ना हम केवल आप सभी की मनोरंजन करते हैं बल्कि दोस्तों कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी आप सभी से साझा करते हैं। तो चलिए ना देख लेते हैं कि आज के इस दिन में इतिहास के पन्नों में क्या क्या छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो है दोस्तों 1977 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर मंडल के बाहरी हिस्सों के अध्ययन के लिए वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 1991 एस्टोनिया देश के सोवियत संघ से अलग होकर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित आज ही के दिन हुई थी। 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच भीषण रेल टकराव के कारण दुर्घटना हुई और इसमें 250 से अधिक यात्री की जान चली गई। आज 20 अगस्त है और इतिहास में देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती और भारत में मनाए जाने वाले सद्भावना दिवस के रूप में दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, और जो है शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए इसे हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। एक और बेहद रोचक जानकारी है आप सभी के लिए, आज विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड में जो है मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है। सर रोलैंड रॉस द्वारा 1897 में मलेरिया और मादा एनोफिलीज मच्छर के बीच संबंध की खोज की याद में इसे मनाया जाता है। यह है ना एक रोचक बात कि मच्छर वर्ल्ड मच्छर विश्व मच्छर दिवस भी यानी कि वर्ल्ड मस्क्यूटो डे भी मनाया जाता है। तो आज के दिन दोस्तों अगर आपको भी किसी मच्छर ने काट लिया है ना तो खुजाते हुए अब झुंझलाइएगा मत और सोचिएगा कि आज के दिन मलेरिया होने का कारण जो एनोफिलीज मच्छर होती है ना मादा मच्छर उसके बीच का संबंध की जानकारी आज ही के दिन जो है साइंटिस्ट जो है सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई थी। है ना ये बेहद बेहद रोचक बात। तो ये थी इतिहास के पन्नों से कुछ जानकारी आप सभी के लिए। तो चलिए अब आप सभी को मैं सुना देती हूँ कुछ बहुत प्यारे प्यारे नगमे। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारी आज के गुड इवनिंग ईटानगर का सेगमेंट अब यही संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। हम आपको बता दें कि बस अब से कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के संबंध में किए जा रहे हालिया दावों को खारिज किया। कहा कि ये दावे गलत है और चीन भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस आया है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह ने नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट एपेक्स बैंक लिमिटेड के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कर सहकारिता विभाग के नए लोगो का अनावरण किया। तवांग जिले के निर्वाचन सूची पर्यवेक्षक YW रिंगो ने जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा की। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। त्रासी जोली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे दौर में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी को और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद की ओर से भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई।
1: श्री सिंह ने कहा है कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारी मैरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स से एक जहाज में चिकित्सा आपात चिकित्सा के दौरान भारतीय सेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के संबंध में किए जा रहे हालिया दावों को खारिज किया। INS को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दावा गलत है कि चीन भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस आया है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ क्षेत्रों में चीनी गतिविधियां बढ़ी है और ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सहित अन्य जगहों से झूठे वीडियो और दावे साझा करना गलत है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी टिप्पणी की है कि अपर सुबनसिरी जिले में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों के बीच आई है। स्थानीय लोगों द्वारा दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSE पार कर ताक्सिंग सर्कल के क्षेत्रों में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट एक्सपेक्स बैंक लिमिटेड के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कर सहकारिता विभाग के नए लोगों का अनावरण भी किया। इसके बाद मंत्री ने सहकारिता विभाग के सचिव मीतो दिर्ची, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा सभी जिलों के DRCS और ARCS के साथ विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें जमीन स्तर पर विभाग के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। साथ ही इन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवहारिक और समयबद्ध उपाय तैयार करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है कि सहकारी पहलों का लाभ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सके। तवांग जिले के निर्वाचन सूची पर्यवेक्षक यानी इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर YW रिंगो ने पूरे जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने SIR प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया और दावों तथा आपत्तियों की तत्काल एवं समयबद्ध सुनवाई, अभिलेखों के उचित रखरखाव, पारदर्शिता तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एक स्वच्छ, समावेशी और त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और पूरी सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। जमीन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए ERO ने जिले भर में गहन पुनरीक्षण अभियान को संचालित करने में निरंतर सहयोग, समर्थन और समर्पित प्रयासों के लिए भी सभी बूथ लेवल अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा है कि

0: भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूल पर बल देते हैं। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वन्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हुए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस की कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ गया है। अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शुभशाची भट्टाचार्जी। The India-Japan Defense Ministers meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, making India defense technology, and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Rajnath Singh said two leading democracies in Asia, India and Japan, share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. Mr. Singh highlighted that the maritime lifelines are facing growing vulnerabilities and the efforts to ensure freedom of navigation, overfight and unimpeded lawful commerce are not just an economic necessity but a strategic imperative. He said the security of the Indian Ocean and the Pacific Ocean is deeply interlinked. The minister said a close alignment between India's Mahasagar vision and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before. Mr. Koizumi expressed

आया आकाशवाणी ईटानगर चार्थर्सडे योकिनी नब अगस्त दिदे हाजे किनी योकिनी सरोयं अमन ने जिम्बंग रोम मंगाचू ने जंतु मुझे इंडिया से जापान कंट्री नवा डिफेंस मिनिस्टर पनी राजनाथ सिंह से सिंजिरो क्वेजुम याचा दिल्ली ने चुनतोंग लिया मैक इन इंडिया मिन ने इंडियन व डिफेंस टेक्नोलॉजी होंकू यमन जुंजे करे बेल्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्याप स्को या न्याप लबी विवेन होयांग लेदा जापान डिफेंस मिनिस्टर सिंजिरो क्वेजुम इंडिया ने कयू याकू राजनाथ सिंह होंडक मतेशोरा बकुला नपसे जापान ने कुमा मोटोहन हतिमा होम्सपू कस्टिका या बस्की खेलिया इंडिया पंगमा जमले आंगें कोई या जापान कु ककोट कु राजनाथ सिंह मिजवा गोंगचुन या चु जापान डिफेंस मिनिस्टर पपंग यमन रेत बहरा यंगे खूब नवा मेंबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल नवा ते या मिजा चुन तोंगला मेंबर डॉन या फंग्याप ससे बोट कु से हेन कदुत डकली लेतोंगने कदुत कुतो यमन तकरेत बहरा या कंगोंगचुन या चु इंडिया नवा तो योसना पाटेल तकरुंका 1945 yang ma United Nations Security Council kenge bema yang ku bub development ku yabab lekoh yang ra bela aman permanent se non permanent membership ya kesis

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ यानी कि मेरे साथ चंद लम्हों के सफर पर निकल पड़े हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। तो वक्त हो चला है दोस्तों इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट का। जी हाँ फ्रेंड्स, बस एक छोटे से हैंड सैनिटाइजर ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स इवनिंग ड्राइव के इस सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, कुछ आज बात हो जाए। वो दिन भी क्या दिन थे जब हरियाली तीज थी और शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी, जो कि आज भी सोचती हूं तो आनंदित कर ही देता है। यूं तो हमारे यहाँ भादों में मनाए जाने वाले हरताली का तीज मनाया जाता है। मैं शहर की लड़की और गांव में ब्याह कर चली गई। थोड़ा अलग सा रहन सहन तौर तरीके, लेकिन परिवार के लोग अच्छे थे। तो शादी के बाद ही फौजी पति को देश की सेवा में हाजिर होने के लिए मुझसे दूर जाना पड़ा, लेकिन कभी भी इस बात से सोचकर मायूसी नहीं हुई कि वो दूर चले गए। लेकिन सावन का महीना था और तीज भी आने वाली थी। ऐसे में मेरे मन में कई सारे सवाल थे, क्योंकि था सावन का महीना, है ना दोस्तों। सुनाते हैं एक और दास्तां आप सभी को, लेकिन इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए सावन के इस पावन महीने में। एंजॉय कीजिए।

भर लोग, सास ससुर जेठानी देवर और सभी रिश्तेदार मौजूद थे। हरियाली तीज का दिन आया तो सासु माँ ने खूब जोर शोर से तैयारियां की। आंगन पर दलान की लिपा पोती की गई, झूले लगाए गए, फूलों से सजाई गई और जो है ढेर सारी हरी हरी चूड़ियां। जी हाँ, हरी हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, बहुत ही सुंदर माहौल था। ऐसे में बस एक ही कमी थी, जो मेरे दिल के करीब का इंसान था वो मेरे सामने में, मेरे पास नहीं था।

तो शाम होते होते ही जो है माहौल कुछ अलग सा बन गया। पकवान बनाए गए और मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई और हरे हरे चूड़ियों से मेरे हाथों को भर दिया गया। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि आगे और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज सावन का हरियाली तीज जो है

जी हाँ, सभी ने मेरा भरपूर श्रृंगार किया। कांच की चूड़िया, हरी हरी चूड़िया मेरे हाथों में सजा दिए गए। हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मुझे यही दुख हो रहा था कि जिनके लिए मैं सज सवार रही हूँ, वो उन्होंने तो मुझे नहीं देखा। ऐसे लग रहा था कि उनसे कभी जिद करूं कि मुझे चूड़िया ला के दे दो, लेकिन वो तो चले गए थे। वैसे जो है, मैं खुद को आईने में देखकर निहार रही थी, तो फिर मेरे सासू माँ और जेठानी, ननद, सभी बच्चे मिलकर मुझे ले गए और बड़े शौक और उत्साह के साथ झूले तक पहुंचाए। बहुत मधुर गीत गाए जाने लगे, मगर झूले में बैठते ही मेरे सारे खुशियां उड़ गई, क्योंकि मुझे किसी की याद आ गई, मेरे पति देव की याद आ गई। जो हर कोई तो मेरे साथ था, लेकिन मेरा जो खास इंसान था वही मेरे साथ नहीं था। और मैं इसी को सोचकर दिल को बिल्कुल जो है मायूस करके मैं झूले पे बैठ गई।

जी हाँ दोस्तों, सावन के झूले और साजन नदारत। सासू माँ ने मौके की नजाकत समझते हुए मुझे बहलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा पहले कि पहले साल ननद के साथ झूला झूलने का रिवाज है और अगले साल अपने पति के साथ झूलना। आज्ञाकारी बहू की तरह मैंने उनकी बात मान ली और छोटी ननद के साथ झूला झूली। दोस्तों उसके बाद शादी के इतने साल हो गए अपने पति और बच्चों के साथ झूला झूलते हुए, लेकिन वो पहले सावन के झूले आज भी मेरे मन को गुदगुदाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक और गीत आप सभी को सुना देते हैं। एंजॉय कीजिए हमारा ये आखिरी नगमे को।

0: दोस्तों वक्त हो चला है आपके इस कार्यक्रम यानी कि इवनिंग ड्राइव को यहीं पर संपन्न करने की। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज के इस इवनिंग ड्राइव में पेश किए गए सभी नजराने और मेरी छोटी सी एक कहानी आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल हम ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों, जी हाँ, शाम की महफिल में। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सब सुन रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुण एफएम को। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का, जी हां, शाम की महफिल में। और आज अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:33 तक आपके साथ बने रहेंगे संचालन निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं यानी कि आप सबकी अपनी आरशी अपर्णा बनी रहेगी आप सभी के खिदमत में। जी हाँ दोस्तों, तो शाम की महफिल का तो वक्त हो चुका है, हो सकता है कि आप अपने घर पे लौट रहे हैं अपने ड्यूटी खत्म करके, या फिर लौट चुके हो, या किसी खास स्पेसिफिक इंसान के साथ आप बैठे हुए गपशप कर रहे हो, शाम का वक्त है। वैसे तो दोस्तों हमारे भारत में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाय या कॉफी का जो रिवाज है वो तो चलते ही रहता है। भले ही कितनी गर्मी हो और शाम का वक्त हो और चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इश्क भरी चाय की चुस्कियां लेते हुए आप अरुण एफएम को सुन रहे हैं फ्रेंड्स, और हम वादा करते हैं आपके शाम को खास बनाने के लिए प्यारे प्यारे गीतों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब जो मैं गीत पेश करने वाली हूँ बेहद ही खास है, आप सभी के दिल को छूने वाली है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे राहों पर ले आती है जहां हमें खुद नहीं पता होता दोस्तों कि मंजिल कहाँ है, बस दिल कहता है कि चलते रहो, शायद यही सफर किसी खूबसूरत मुकाम तक ले जाए, है ना। तो चलिए बहुत ही प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत ही नहीं होता, वो हमें हमारी यादें, हमारे सपनों को और उन खूबसूरत दिनों में ले जाता है जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, अब जो मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी को गीत, उसमें जवानी की उमंग, आने वाले कल के सपने और जिंदगी को खुलकर जीने की एक खूबसूरत सी चाह है। तो चलिए हम खो जाते हैं इस खूबसूरत सी गीत में। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत संगीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम आप सभी के शाम को बेहद खास बनाने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप स्पेशल प्रोग्राम के तहत आज आप सुन सकेंगे व्हाट्सअप अरुणाचल और एक साक्षात्कार एंटरप्रेनर नीमा सोना, फाउंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक एंड मनीष मॉल स्टार्टअप मैनेजर के साथ।

0: What if your next big opportunity isn't a job you find, but a business you build? What if the resources around us, the ideas in our heads, and the problems we face every day could actually become the starting point of something bigger? Today, entrepreneurship is changing the way young people think about their future. And here in Arunachal Pradesh, we're beginning to see that change too. But starting a business isn't easy. Where do we start? Where does the money come from? How do you find your market? And how importantly, how do you turn an idea into something that actually works? We're putting those questions on the table today. In this episode of What's Up Arunachal, a joint presentation of Didi Arun Prabha and Akashvani Ithanagar, we have with us Nima Sona, founder of Any Organics, and Manish Mall, startup manager at Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park, APIIP. Two different perspectives, one big question. Can Arunachal become a place where young people don't just look for opportunities, but create them? Before moving ahead, let's look at what is APIIP and its mandate.
1: हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जब उस विचार को सही अवसर और उचित सहयोग मिलता है, तो वही एक सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का काम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP। अगस्त 2021 में स्थापित APIIP अरुणाचल प्रदेश का पहला स्टेट ऑन्ड प्रमुख इनक्यूबेटर है। इसका उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना और राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना है। अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 20 जून 2022 को अधिसूचित की गई। इसका लक्ष्य राज्य में कम से कम 250 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इनक्यूबेशन सेंटर विकसित करना, इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी APDP के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट, ट्रेनिंग, बूट कैंप, वर्कशॉप, मेंटरशिप और नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 156 स्टार्टअप्स को सरकारी सहायता मिली है। APIIP ने राज्य के साथ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU किए हैं। इनके माध्यम से सैटेलाइट इंक्यूबेशन सेंटर्स विकसित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी और युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को सफल बिजनेस में बदल सकें। APIIP से जुड़े स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक इंडिया, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख प्रोग्राम्स में भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अरुणाचल प्रदेश को स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण में बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में स्थान मिला, जबकि APIIP को वर्ष 2023 में स्टेट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, क्योंकि लक्ष्य केवल स्टार्ट

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों, जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, तो सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। वक्त हो चला है आपके एक और फेवरेट प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार का। आज के कलाकार का ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हम हिंदी फिल्मी जगत से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियों के बारे में बात करते हैं, भले ही वो फिर अदाकार हो, फनकार हो, गायक कलाकार हो, गीतकार हो, संगीतकार क्यों ना हो, उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को प्ले करते हैं और उनके कुछ रोचक जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी बॉलीवुड से तो हम सब बहुत ज्यादा प्रेरित भी है और जब भी मुंबई जाने का हमें मौका मिलता है या एयरपोर्ट या यही कहीं पर भी मिल जाते हैं फिल्मी जगत के लोग, तो हम उनको देखने के लिए, उनसे एक सेल्फी उनके साथ खींचने के लिए बेताब तो हो ही जाते हैं, है ना। और कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि फिल्मी दुनिया के लोगों के बंगलों के सामने में हम एक झलक पाने के लिए घंटों तक खड़े तो रहते हैं मुंबई में, है ना। तो चलिए आज मैं एक जाने माने गायक कलाकार के बारे में बातें करूंगी जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही मशहूर है, आज जिनको शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं। एंड ही इज नॉन अदर देन कैलाश खेर। जी हाँ दोस्तों, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं जिनका जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अनूठी और सूफी और रॉक गायकी शैली ने उन्हें पूरे दुनिया में एक खास पहचान दिलाई। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म जो है एक पारंपरिक परिवार में हुआ। उनके पिता महर सिंह खैर भी एक पारंपरिक गायक ही थे। जी हाँ, कहते हैं कि लगभग 12 से 14 वर्ष के बीच में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था संगीत के कारण। जी हाँ, और फिर ऋषिकेश में और अन्य स्थानों पर रह के भी संगीत और शिक्षा और साधु संतों के साथ इन्होंने भजन गाया। एक और खास बात इनके बारे में है, शुरुआती दिनों में इन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और कहते हैं कि इन्होंने अपने जिंगल्स गाकर अपने करियर की शुरुआत की और 2001 में ये मुंबई आ गए, सपनों की नगरी में आ गए और फिल्म वैसा भी होता है। जी हाँ, इस फिल्म में इन्हें गाना गाने का मौका मिला, अल्लाह के बंदे। और अगर आप जो है इस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको सिर्फ आवाज, कैलाश खेर के आवाज और गिटार की आवाज ही आएगी। और इस गीत से इन्हें जो है इतनी प्रसिद्धि मिली कि ये फिर मुड़ के पीछे नहीं देखे। चलिए मैं आप सभी को सुना दूं, बातें बहुत हो गई है, इनके बारे में कुछ गीत हो जाए।

जी हाँ, इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर इन्होंने चांदनी चौक टू चाइना, कॉरपोरेट टू और अनगिनत फिल्मों में अपने जो है अपनी आवाज दी और मुंबई का सफर इनका जो है दोस्तों शुरू हो गया। वैसे इन्होंने अपना एक कैलासा नाम का अपना एक संगीत बैंड भी बनाया 2004 में और परेश और नरेश कामत के साथ मिलकर इस बैंड को बनाया। दोस्तों इनका जो है सफर जो है हमेशा एक अलग ही दुनिया के रहने वाले जो कहते हैं कि अलग आवाज, एक आवाज में एक अलग सी खास एक जो है आपका इनका जो टोन है, और हिंदी के अलावा जो है इन्होंने तमिलनाडु और तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और गुजराती में 18 से अधिक भाषाओं में 300 से अधिक ज्यादा बॉलीवुड गीत गाए। तो एक और गीत आप सभी के लिए।

सिकंदर को जो है, जी हाँ दोस्तों, इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। जी हाँ, दूसरी बात ये है कि इन्होंने अल्लाह के बंदे तो गाए हैं, सयाज, चांद सिफारिश, अर्जिया, बम बम बोले जैसे गीत से आज भी ये बहुत ज्यादा मशहूर है, और तेरी दीवानी की एल्बम बहुत सुपर टूपर हिट रही इनकी। चलिए इस गीत को हम पूरा सुना दे दोस्तों आपको जल्दी से।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज के कलाकार के ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होती है। आप आनंद उठा रहे थे कैलाश खेर के गाए हुए गीतों को, और हम तो कैलाश खेर जी को यही कहेंगे, आप और ढेर सारे गीत गाते रहे, यूं ही गाते रहे गाते रहे, और हम यूं ही आपके सॉन्ग्स को प्ले करते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैलाश खेर जी। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का, बने रहे। अरुण
1: मलिंगम अल्बो ओलियम आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz सोगलम मेडियम वॉय 444.4 मीटर गला 675 किलो हर्ज उरे सोग निसे आगम का मोदम निरब दुकुन तन ब मलिंगम हुमरदन अतु चब नुले तपाता निशि पुयम होको कर तपाता इन सेम ग तंगम अल्बो निशि वेमिनम सेत पोलिक सोलग लोली चमनी अलग ओयम ग कन मोदग निसि पुयम नुले दन तबायम ग आगम होग तपाता इन सेम ग निसि पुसी Solo New Delhi nyok India la Japan gada ayik chetu dotur ga defense ministers tulu ga dokumam dogag nukbahal. Hoga dokumam defense minister tup Rajnath Singh la Japan ga tup Sinjiro Khojumi bunye dogal maritime security pago ho la Make in India pago ho kam atur la al madab gonyagan kubahal. Hoga gada ayik minister anye maritime security cooperation pago ho memorandum of arrangement ga potangam tir basgan kubahal. Hoga dokum ga dor abdik ho tup Rajnath Singh Japan ga tup Khojumi nan India gada so हाशिकम गुब अल्ब हाथ का हल पहले हमले जिल जापान के कुमा मोतो न्योक हो न्यो भील चिचा बया निग गब हमले के इंडिया गदा लागे दाग निये दुह दो बाल अल्ब मोत गब हमले गग जिदन हल बेल न्यो कम हित गो सका बोन गे काला तैन हम कले जिताए कुन हल गोले जिगनुक बा होग लगाब इंडिया जापान गे गदा अन्य गे नीन पर भी बिगिसम कुलिम कोल हालम गब अन्याला अभी मिनसिल दोग तुझका हल बेल सोग हाता दन निगन अन्य सो गदा अन्य गे नीन बराब कोग अन्य चम हकन तिल नीन गे मोदम सोताई कुन हल कम तूप राजनाथ सिंह गोले जिगनुक बा हल पुये विपाद United Nations Security Council ge bon kanik ek pago ho al kuram mekole go ka paka mins ko ho India ga data sogam kal do bo United Nation ge dan yojna patel begam United Nation ge do do bo structure ham madir ga nyat ka hal belme gotam go message ja do do bo pub ha ga da gnyo ma sekur ge kur ga kata jot kuma hal bel ho ga oyug mod ho ga atol la al yadab madir kin ji do habal okam 1945 anyi ko ke United Nation ge odil lo bon ni do bo ai ja ko ne lej पाको हब्सुलिल ओयुग दोन्या बम अपोसोक टेक्नोलॉजी ला मॉडर्न मोसम आइन कलम ब मुन्यायो का हलबेल इंडिया ग दांगम परमानेंट ला नॉन परमानेंट मेंबरशिप लो ग्लोबल साउथ ग जितब का हल कोगनकुवा होग जिनम बनम ला मदर मपुर ग बनम पब हेपल अपनम नितु होग ही गर्ल गोमिन पमिन सुदब मत का हल कम दन योजना पटेल गोले जुगनकुवा हल पुए बेपादो Union Minister Tup Kiran Rijiju, Upper Subansiri District, Taksing Circle, Ho Chinese Troop, Hadik Hal, Puita Pagak Pago Ho Molyo, IANS Ho Puigo, Bilil Gotam Jigama, Arunachal Pradesh Nyok So Chinese Tuluga, Hal Ledak Hanam Pui Pata Jodu Bosi, Halyong Akalsi Jatuma, Oglagab Chinese Troop, Arunachal Pradesh Uri Ho Cham Kilometer, Uri Hab Hanam Gapui Janam Sirup Jatuma Hal, Hab Jakam Jatuja, Chinese Touch Hoga, Meg Bon Kane, Nigama, Meg Nispa Hoga, Nampini Tuluga Mud. गौतम बिताम नाम समकम तमु दब निज माहल होगा हरा बेगा मसिक सिर पुया ऐ जागो और यू बांग्लादेश न्योक अलग कम ऐ जागो जैसे जेमिल जाल दो पासो सब अम खालियो पुयम दुलिन बिलिन गनम से अल जामा पाहल गोले जिकनुक पाहल पुये बेपादो मोल आल नहरलगन ग रूरल एंड डेवलपमेंट ला पंचायती राज के मिनिस्टर तुप ओजिंग तसिंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट अपेक्स बैंक लिमिटेड तो लोग अब नित वो कॉन्फ्रेंस हॉल अकला डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के लोगों गम बोन निरब गम दुको मको जिग्न को बहल हो गए कोक हो मिनिस्टर रिव्यू दो कुम गो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर तुप मितो दर्ची लोग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लोग हो गए मूल डिस्ट्रिक्ट के DRCs ला ARCs लोग दोबम डिपार्टमेंट के उर अस हापा गो हो गए हाता दिन मोदम डिपार्टमेंट के अलब सेकुर गब हो गए भे बोन कार्निक इन किन दिन हो पाओ हो गोमिन पमिन सुन्यागन को बहल होगा डिस्ट्रिक्ट के नाम पिन बम भी नियम स्कीम्स बन पाओ कम अन्य अलब चिंच चिंप गम दुको गोन्यागन को बहल पुए बेपादो तन बहुत नुले से जा आकाशवाणी ईटानगर सोगे नुसे पुयम ताल दो दो मोल आल तवांग डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर दन YW रिंगू इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिव्यूज एंड SIR बोन निदो अदो नमम

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी समाचार। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में तथा शॉर्ट यानी कि 675 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ।

0: दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, तो बने रहे हमारे साथ यानी कि अरुण एफएम के साथ, और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
4: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
5: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा सकेंगे हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों के साथ, जो जाएगा बिल्कुल बैक टू बैक।

0: years. Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: जिंदगी में दोस्ती के मायने कौन नहीं जानता। कहते हैं ना कि दोस्त एक चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा ले। हालांकि अब दोस्ती के रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में मसरूफ जो है। पर मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, आपको बता दूं कि अगर आपको जिंदगी में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी तो निकल पड़ी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz और कार्यक्रम है अपना गीत। और अपना गीत कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपके रेडियो साथी कईर अत। तो श्रोता, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनाने जा रही हूँ दोस्ती के दीवाने की ऐसा गीत जिसे हम और आप सब ने बहुत बार सुने हैं और जब भी सुनते हैं मजा आ जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये है गीत के बोल और सीधा बनर्जी की आवाज़। जी हाँ, निशी गीत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा।

अभी आप सुन रहे थे लापांग दादा की आवाज में नुक्ते गीत। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज और कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं तागिन गीत युकार दुई की आवाज में।

चांद और तारे आसमान में निकलकर रात के आगमन बता देते हैं। सूरज सुबह अपनी रोशनी से दिन के आगमन का संदेश देते हैं। पर मेरे प्रिय, आपका क्या संदेश है? क्यों आप इतने खामोश हैं? श्रोता, अपना गीत कार्यक्रम में लीजिए पेश है गालो गीत। ये विरह गीत है स्वर्गीय तोई कातो की आवाज में। छोटी सी उम्र से ही गाने में रुचि थी उनकी। हालांकि तोई कातो ज्यादा गीत नहीं गाए हैं, 2-3 ही गीत गाए हैं, पर वही 2-3 गीत आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वैसे आज आप हमारे बीच नहीं रहे, पर हमेशा हमारे दिलों में आपके गीत आपको जिंदा रखते हैं। तो आइए सुनते हैं तोई कातो की आवाज में ये गालो गीत।

श्रोता सुन रहे थे गामुआ जोहम की आवाज में वांचो गीत। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अपना गीत। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में आइए सुनते हैं अंतिम गीत, तागे तायू की आवाज में आपतने गीत।

0: तो श्रोताओ, इसी अपतनी गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे अपना गीत कार्यक्रम के साथ, जिसे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से पेश खिदमत किया जा रहा था। वक्त हो चला

के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

भले दोस्तों भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भले ही ये भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन ये सदाबहार है जिन्हें हम अक्सर होठों पर गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए आज आप सभी को बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनवा देते हैं। एंजॉय कीजिए।

फिल्म सुहाग के इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक गीत के साथ ही दोस्तों हमारे आज के भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। आप आनंद उठा रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल चलते चलते अब वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज के हमारे इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे और यूं ही अरुण एफएम को सुनते रहे, प्यार बरसाते रहे दोस्तों। जी हाँ, और वो कहते हैं ना कि पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं, है ना दोस्तों। इन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपकी मंगलमय कामना करते हुए संचरण निष्पादक ताना आतुम, संचरण निष्पादक गोपाल राय, माफ कीजिएगा, संचरण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा को रुखसत होने की दीजिए इजाजत और आगे के कार्यक्रमों के लिए आप बने रहे एफएम गोल्ड चैनल पर। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, शिवरात्रि, जय हिंद।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए?
2: मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, सिस्कर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अवशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्यीय नदी जल विवादों के लिए एक सशक्त कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था, आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्कसंगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
2: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरशेड कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब हरियाणा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीनों स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का बाजरा दलहन तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्भरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान यह है कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
1: अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
2: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 30 से 38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं जलकर 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विस्तृत करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है जो पहले से तनावग्रस्त परिस्थिति तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला

0: मीटर क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
1: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे।
0: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजनाओं पर बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब उस क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए और वो भी उसमें शामिल हो।
1: अरविंद जी, जैसे भी देश में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो।
0: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले, तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी, चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में, शहर में कई तरह के तालाब हों, ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को, जो है जो आपकी रोज की जरूरत है, उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरतें आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है, जैसे पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रहे। और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को, जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर चला जाता, तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहां इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा भविष्य का रहेगा।
1: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाएं जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो?
0: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन के, क्योंकि जल्दी जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग MSME के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं, पर MSME इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तरों पर संचालित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता, जैसे MSME मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
1: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है, इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
0: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे हैं पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाएं चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे अभी सुना हो सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम, या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
1: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है, भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर

0: जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं, और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने की भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं। तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं, वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
1: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और दलवाई समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30 से 50%, औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है? क्षमता बनाम वास्तविकता। सो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली, जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट एग्रिक सिंचाई, मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, ना कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता, फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है।
0: अरुण जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है? यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें?
1: मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्व यानी नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, की समस्या हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्राय रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एवं सोलिनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपयोगिताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मांग यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनाना चाहिए।
0: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: This is Akashvani. In the program Insights, now we bring you a discussion on digital bricks shaping a resilient and inclusive digital future. The participants are Atul Aneja, international affairs expert, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
4: I'm joined by Shri Atul Aneja, who's a strategic analyst, and today's topic of discussion is on digital bricks

0: न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। मस्टलिविन में FIH महिला हॉकी विश्वकप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required.

0: required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy, HPEC, to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC Civil Services Examination and the Food Safety Officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The government has allowed duty-free imports of up to 10 lakh metric tons of raw sugar until 31st of October this year, the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, in a notification issued today, said imports of raw sugar will be allowed without duty under a tariff rate quota of 10 lakh metric tons subject to specified conditions. The government unveiled the Delhi Master Plan 2047 today. The master plan provides the long-term spatial, economic and institutional framework to transform Delhi into a globally competitive, environmentally resilient and inclusive capital. The master plan for Delhi 2047, aligned with the vision of Viksit Bharat 2047, aims to transform the national capital into a world-class, inclusive and economically vibrant city for nearly 3.2 crore people. The India-Japan Defence Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defence technology and expanding strategic trust. In his opening remarks, Defence Minister Rajnath Singh said two leading democracies in Asia, India and Japan, share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity.
1: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries, but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.
0: Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was today elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes in the presidential election. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in the final Pool D match at Amstelveen in Netherlands. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया और अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
2: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
3: हमारी मेरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
2: श्री कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत देती है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पौसुमी बसु और नेपाल के शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारतीय चिकित्सा यात्रा प्रतिनिधिमंडल ने भूटान का दौरा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा समन्वित इस दो दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच चिकित्सा साझेदारी और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी विकास पर चर्चा की गई।

0: समूह ने थिम्पू में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य संस्थानों और यात्रा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरे का संचालन भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने किया। पिछले महीने विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटानी प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत भूटान सहयोग पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बढ़ते हुए असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अवामी कार्यवाही समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। समिति ने कहा कि वह पूरे क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से प्रदर्शनों को तेज करेगी और बेहतर आर्थिक स्थितियों तथा संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। पाकिस्तान ने POJK में इससे पहले कभी इस स्तर का विरोध नहीं देखा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि POJK के लोग इस बार उसी जाल में नहीं फंसेंगे जैसा कि वे अतीत में कई बार फंस चुके हैं। इन विरोध प्रदर्शनों ने POJK पर भारत के रुख को और मजबूत किया है। भारत का हमेशा से यही कहना रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा दबाया गया है और उन्हें बुनियादी अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारी ओली अहमद को हराया जो दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। इस चुनाव में संसद के कुल 343 सदस्यों ने वोट डाले। मुख्य चुनाव आयुक्त ASM नासिरुद्दीन ने श्री आलमगीर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया। ये चुनाव 35 वर्षों में पहली बार हुआ क्योंकि बांग्लादेशी राष्ट्रपति चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। पिछले चुनावों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। एमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Ashish P. Abraham with the World News. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. India allows duty-free import of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir spread as Islamabad struggles to contain growing defiance. Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president in first contest in 35 years. And in Women's Hockey World Cup, India qualifies for second round after goalless draw with England in Pool D match. The India-Japan Defense Ministers meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, making India defense technology, and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation.